अस्यानां सुपतिरागिलाण्डगोरी ब्रह्मानगानगस्त्यः स्वस्ति प्रजारं परिवायत्यं घोता ब्रह्मण्या सुखिनो भवन्तुः ममोपात्या समस्तां दृशे द्वारा परमेश्वरा वृत्यत्तं सुभे सोमोत्तिः सर्वागदृष्टिः विश्वं विदेः करियुगे प्रसमे प्राते जम्बो वीवान वीलुहो दक्षिणे प्राते सकला गुणा विनेष्टाराम सुपरिदोह ओम नमो नारायणाय।

ओम श्री वंकदरमणाय नमो नमः ओम नमो नारायणाय दुवंकरेशाय श्रीनिवासाय मंगलाय नमो नमः ओम अखिलांडकोटिये ब्रह्मानगानगिये स्वस्ति बजारं परिवायत्यातम्

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो।
1: मुझे भी कुछ कहना है,
2: मुझे कुछ कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है।
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
2: अच्छा मैं कहती हूँ

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: रेडियो मॉरिशस।

0: बढ़ते चलिए, सुबह के ठीक 6 बज रहे हैं। समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम अभी के साथ है सुनते हैं। नमस्कार आपको अभी।
1: नमस्कार रिया, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। ये बात बार बार दोहराई जाती है कि हमारे जलाशयों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। मोहवाकवा में पानी का स्तर वर्तमान में केवल 36.8% है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये 90% था। हमारे पानी के भंडार को सुरक्षित रखने और पानी को यथासंभव लंबे समय तक चलाने के लिए अधिक सख्त उपाय अपेक्षित है। एक क्राइसिस कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री पत्रिक आस्यावादन कर रही है। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के महाप्रबंधक श्याम तानू द्वारा की गई घोषणा के अनुसार पहली बैठक अगले सप्ताह होने की उम्मीद है। मॉरिशस ने साल 2026 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 50वां स्थान हासिल किया है। ये वैश्विक रैंकिंग दुनिया भर की 139 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार क्षमताओं और प्रदर्शन को मापती है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार मॉरिशस वैश्विक इनोवेशन रैंकिंग में 3 स्थान ऊपर चढ़कर साल 2025 के 53वें स्थान से अब 50वें स्थान पर पहुंच गया है। साल 2019 में ये 82वें स्थान पर था, यानी तब से अब तक इसमें 32वें स्थानों का सुधार हुआ है। बैंक ऑफ मॉरिशस में चलन में बताए जा रहे जाली नोटों के खिलाफ सतर्कता बरतने की अपील की है, विशेष रूप से करेंसी नोट्स के प्रभावित होने की आशंका है। सेंट्रल बैंक ने किसी नोट की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए सही तरीकों की याद दिलाई है और जनता से आग्रह किया है कि वे किसी भी संदिग्ध मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दें। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि इंडोनेशिया में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने बताया कि भूकंप की तीव्रता 5.2 थी। भूकंप सुबह के 5:07 पर आया। इसकी गहराई जमीन के करीब 3-10 किलोमीटर नीचे थी। और अंत में मौसम का हाल।
2: You're listening, RM Free, Radio.

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी बीमार की इयादत करता है वो उस वक्त तक जन्नत के फलों के बाग में रहता है जब तक वापस न आ जाए। इस्लाम बीमारों की दिलजोई को बहुत अहमियत देता है।

यादत करते वक्त बीमार के सामने हौसला अफजा बातें करनी चाहिए। उसकी बीमारी के बारे में खौफ पैदा करने वाली बातें नहीं करनी चाहिए और उसके लिए शिफा की दुआ करनी चाहिए। यादत मुख्तसर और बादब हो तो ज़्यादा बेहतर है, ख़ास तौर पर जब मरीज़ आराम का मोहताज हो।

मोहतरम सामीन, अगर हमारे किसी रिश्तेदार या दोस्त को बीमारी लाहक हो जाए तो हमें उसकी खबरगीरी करनी चाहिए। सिर्फ फ़ोन पर खैरियत पूछ लेना अच्छी बात है, लेकिन मुमकिन हो तो ख़ुद जाकर इयादत करना भी बहुत बड़ी नेकी है। बीमार के पास बैठकर उसका हौसला बढ़ाएं, उसके लिए अल्लाह ताला से शिफा की दुआ करें। अल्लाह ताला हमें बीमारों की इयादत करने, उनकी खिदमत करने और उनके लिए दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सामीन कराम, सबा खैर प्रोग्राम करीब ख़त्म होने वाला है। आइए आखिर में रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजराना पेश करते हैं। इंशाल्लाह समीर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।

0: 94.6, 98.2 તમે સાંભળી રહ્યા છો RM3 રેડિયો.
1: ત્યાં જો મારું ફેવરેટ છે.

शक्ति। भक्ति में शक्ति कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। जब तक भक्ति हमारे मन में है, संसार की कोई भी बाधा हमें डरा नहीं सकती। प्रभु की वंदना करने के अनेकों तरीके हैं, उनमें से प्रभु का गुणगान सबसे सरल रास्ता है प्रभु तक पहुंचने का। आइए भक्ति में शक्ति कार्यक्रम में चंद भजन सुनते हैं और गाते हैं प्रभु का नाम, और साथ साथ प्रभु भक्ति में हम रमे रहते हैं। सर्वप्रथम गणपति जी का गुणगान करते हैं और गणपति जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे हर दुख को हर ले और दया का सागर बहा दे हमारे जीवन में।

राम जी हैं देने वाले, हम हैं मांगने वाले। राम जी हम भक्तों की मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। हुआ होगा ऐसा कभी कि आपने कुछ मांगा हो पर प्रभु ने आपकी ये इच्छा पूरी न की हो। इस बात पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जो इच्छाएं भगवान पूरी नहीं करते उनमें शायद कोई बुराई छुपी होगी। बस भगवान आपकी अच्छाई पर ध्यान देते हैं, भगवान वो करते हैं जो आपके लिए अच्छा।

देवी मैया जगदम्बे मैया के आगे हम तो बालक है नादान माँ हर ले हमारा अज्ञान भक्ति का दे दे हमें वरदान सुमिरन गा के माँ का प्यार दुलार पा जाएं हम उनका

मैया के शरण में स्थान पाकर हर मैया का भक्त स्वयं को कृतकृत महसूस करता है। आइए गुणगान करें हम माता का और माता के शरण में स्थान पाकर उनकी ममता की छाँव में हम अवश्य सुख पाए, प्रसन्नता पाए और स्वयं को बहुत ही सौभाग्यशाली माने।

नरकें प्रभक्तिमय वातावरण जगाएं। जिस घर में भाई बहन में निश्चल प्रेम हो, माता पिता का आदर सत्कार होता हो, सेवा होती हो, जिस घर में अतिथि का आदर सत्कार होता हो, वो घर स्वर्ग कहलाता है। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि हर घर बन जाए स्वर्ग के जैसा, हर परिवार में हो प्रेम, प्रेम का आशीर्वाद दे प्रभु हर परिवार को। यही प्रार्थना है भगवान से।

आइए इस बार शिव जी का नाम लेकर पवित्र इस वातावरण में शिव जी की कृपा पाएं हम। भोले बाबा के चेहरे का तेज सबको मिले, उनके चेहरे की मुस्कान हर किसी के दिल की गहराई में उतर जाए, ताकि मुस्कुराता हुआ हर कोई अपना जीवन व्यतीत करे और सुख और शांति का आभास उनको हो।

हर किसी के मन को मिले ऐसी प्रार्थना चलिए हम बजरंग बली से करते हैं। उनके शरण में जाकर यही प्रार्थना करें कि इस संसार में हर कोई किसी न किसी की सेवा करके हर किसी न किसी को खुश जरूर करें, किसी न किसी को राहत अवश्य पहुँचाएँ।

आइए इस बार हम कुंज बिहारी की आरती गाते हुए पवित्र पूरे वातावरण को कर डालें। आरती गाते हुए श्री कृष्ण जी की हम यहीं पर समाप्त करेंगे भक्ति में शक्ति कार्यक्रम को। प्रभु आपको सुखी रखे, सुरक्षित रखे। जय माधव मदन मुरारी।

Center 94 North South 95.6 East West 98.2. You are listening to RM3 Radio.

94.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3 You're listening to RM3 Radio मन

जहां 12:07 हुए हैं, संडे का दिन है, 4 अक्टूबर 2026। हेलो, नमस्कार, प्रणाम, आदाब एंड ए वेरी लवली गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। जहां आप जुड़े हैं आरएम फ्री रेडियो मनोरंजन से, और हमेशा की तरह संडे का दिन जो होता है ना, हम एंजॉय करते हैं, हम अपने आप पर फोकस करते हैं, हम अपने फैमिली पर फोकस करते हैं, और साथ में प्यारे प्यारे गाने सुनने के लिए बेकरार होते हैं। और यह है आपका ही अपना प्रोग्राम सुहाना सफ़र। हाँ जी, और मैं हूँ देवीना, हमेशा की तरह आपका साथ देती आ रही हूँ हर संडे को, और आज भी हमारा और आपका प्यारा साथ होगा अभी से लेकर 3 बजे तक, और अभी से लेकर 2 बजे तक कुछ प्यारे प्यारे सदाबहार नगमे डाउन मेमोरी लेन लेकर जाएंगे। और आप जस्ट गेस कीजिए कि आज किस कलाकार पर हम कुछ एक दो गाने सुनाएंगे आपको। और आप जानती हैं कि वीकेंड है का समय है, और आज बोरिंग गाने नहीं बल्कि हंसे जैसे वो गाने जो हम को खुश कर दे वो लेकर आते हैं, और किसी ना किसी एक कलाकार पर पिक्चराइज गाने लेकर आते हैं। साथ ही आपके कुछ डेडिकेशंस, आपके कुछ रिक्वेस्ट अभी से लेकर 2 बजे तक, और 2 बजे से 3 बजे तक होगा स्वीट स्वीट 90s। तो किस कीजिए, हम आपको ले चलेंगे किसकी जिंदगी

के बारे में बात करेंगे, किसके गाने हम चलाने वाले हैं, एक और गाना हम चलाते हैं। तब तक आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं ऑन 5250-6200-5250-6200 या फिर फोन द्वारा 402-8070-402-8070। तो आज का ये सफर होने वाला है बेहद खूबसूरत, रंगीन और यादों से भरा। बस कारवां मूवी का गाना आप सबों के लिए। मौसम प्यारा प्यारा है, कुछ इलाकों में हल्की सी बारिश और साथ में प्यारा सा जो सूरज है ना, वो अभी तक हमारे सिर पर है। बस इस संडे का मजा लीजिए।

0: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो।
1: ये साहब ने मुझे रिहर्सल के लिए बोला, मैं आता हूँ। जब उन्होंने गाने की रिहर्सल दी तो मैं चुप हो गई। मैंने बोला, बाप रे ये कैसे होगा अब मुझसे, क्योंकि उस चीज़ की आदत ही नहीं थी हमको। उन्होंने कहा, रिहर्सल की जगह नहीं होता तो बदल देता हूँ। उन्होंने कहा बदल देता हूँ, और मेरे एकदम गुस्सा आ गया, क्योंकि बदल देना ये हमारे स्वभाव में नहीं है कि कोई कहे कि आप गाइए और हम गा नहीं सकते हैं तो हम प्लेबैक सिंगर कहे के। मैंने कहा, नहीं मैं गाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी, मैं 15 दिन रिहर्सल करूंगी। और मैं वो गाना गाने के लिए गई, और वाकई उस गाने के बाद मुझे 100 का नोट हाथ में रख के RD बर्मन साहब ने कहा कि वाह क्या गाया आपने।

जी हाँ, आजा, आजा, आशा जी की आवाज में। ये था रफी साहब के साथ और आशा जी, आशा भोसले की आवाज ये थी फॉर द ब्यूटीफुल चार्मिंग एवरग्रीन एक्ट्रेस आशा पारेख। बिल्कुल, आज हम आशा पारेख पर पिक्चराइज कुछ गाने चलाने वाले हैं और हम जानते हैं उनके लाखों करोड़ों फ़ान्स हुआ करते थे और आज भी उनके फ़ान्स उनके गाने सुनने के लिए बेकरार होते हैं, बेताब होते हैं। तो एक्चुअली उनका जन्मदिन था, आशा पारेख का जन्मदिन था ऑन द 2nd of September और उनका जन्मदिन जो बीता नहीं सेकंड ऑफ अक्टूबर और वे 84 ईयर्स की हो चुकी हैं। और क्या कहें इस एक्ट्रेस के बारे में, आप लोग तो जानते ही हैं, जितने लोग इनकी दीवानी हैं और जैसे जो जेंट्स तो उनके दीवाने थे ही, मगर लेडीज़ भी उनकी दीवानी थी क्योंकि उनका जो स्टाइल था बिल्कुल अलग था उस दौर में। अरे वाह, क्या दौर था। तो हो जाइए तैयार क्योंकि आज बजेगा संगीत, खिलेंगी यादें और दिल कहेगा हाँ जी। यह है MBC और एमफ्री रेडियो मनोरंजन पर होता है हमेशा आपका सफर हो जाता है सुहाना। सो आशा पारेख, नाम लेते ही आंखों के सामने उभरती हैं एक चुलबुली मुस्कान, खूबसूरत एक्सप्रेशंस और वो शानदार अंदाज जिसने 60s, 70s, 80s के सिनेमा को एक अलग रंग दिया था। और उनकी खूबसूरती के क्या कहना, सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं थी, उनकी असली पहचान थी उनकी अदाकारी, नृत्य और स्क्रीन प्रेजेंस। उन्होंने रोमांटिक रोल्स किए, इमोशनल सीन्स हो या फिर चुलबुली हीरोइन का किरदार, हर अंदाज को बड़े खूबसूरती से निभाया और उनके साथ जुड़ी बातें बस पूछे मत। उनके गीतों में रोमांस भी था, मस्ती भी थी और ज़िंदगी की खूबसूरत धुन भी। और उनके गाने चलाए और आप मत नाचेंगे नहीं, ये हो नहीं सकता। तो चलिए शुरुआत हमने कर ली है इतने प्यारे प्यारे गानों के साथ, तो संगीत के साथ आप जुड़े रहिए और ये है आपका ही मनपसंद रेडियो चैनल RM Free रेडियो मनोरंजन। तो बस अगला गाना जो है ना, वो है तीसरी मंजिल मूवी का गाना और आशा पारेख की बात होती है और ये गाना नहीं चलेगा, ये हो नहीं सकता। और आप जानते ही हैं तीसरी मंजिल में आशा जी की आवाज़ के साथ रफ़ी साहब की आवाज़ भी है। ओ मेरे सोना रे, सोना रे, हाँ सोना रे, सब मिलकर साथ में गाएंगे और ये गाना जाएगा स्पेशली शुमें कहें कि करुणा जी ओए होए वो कुछ बीमार हैं, तो गेट वेल सून माय डियर। सो करुणा के ओर से ये गाना जाता है फॉर सिस्टर इन लॉ सबीना जो कुकिंग एंजॉइंग योर शो, थैंक यू सो मच, और मामी मुनीराम के लिए ऑल्सो फॉर मामी विमला। तो ये गाना आप सुनिए और साथ में आप नाचेंगे भी।

बारह बजकर 28 मिनट हुए हैं और जिस संडे का दिन 4th of October 2024, क्या बात है, क्या गाना था और ये गाना किसको पसंद नहीं है भाई। भाई लोग फोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं अयो मुझे ये गाना पसंद था, चल दिया पता नहीं, कोई बात नहीं, हम और गाने चलाने वाले हैं आशा पारेख पर पिक्चराइज्ड। और कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं, और आशा पारेख जी के गीतों की यही खासियत है दोस्तों, एक बार बजे तो यादें अपने आप लौट आती हैं, कभी कॉलेज के दिन, कभी पहली मोहब्बत, कभी दोस्तों की महफिल, और कभी रेडियो के सामने बैठकर गाने सुनने का वो प्यारा दौर। क्या मज़ेदार दिन थे

और आज हम उन मज़ेदार दिनों को वापस लेकर आए हैं सुहाना सफ़र प्रोग्राम में। यही तो है सुहाना सफ़र, जहाँ पर आपके साथ हम डुबकी लगाते हैं उस सफ़र में, उस दुनिया में जो कहीं ना कहीं

डांसर भी थी। उनके डांस मूवमेंट्स में एलिगेंस था, एक्सप्रेशंस में शरारत थी और कैमरा के सामने उनका कॉन्फिडेंस देखते ही बनता था। उनकी फिल्मों के गाने आज भी सुनते ही दिल कह उठता है बस वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ाइए जी। तो वॉल्यूम बढ़ाइए और एंजॉय कीजिए एक और एवरग्रीन मेलोडी। मगर इस फिल्म में वे आ सेकेंडरी एक्ट्रेस नज़र आई थी क्योंकि 80s में आते आते उनको जैसे उनका उम्र भी बढ़ा और साथ में उन्होंने ये मान लिया कि अब वे मेन लीड में काम नहीं कर सकती। तो उन्होंने क्या किया, सेकेंडरी रोल में या फिर भाभी की रोल में या माँ की रोल में उन्होंने ऐसे काम किए कि लोगों को अच्छा लगा और हमेशा उनको याद करते रहे। तो बस फिल्म कालिया में 1981 की फिल्म कालिया में बच्चन साहब थे। तो इस फिल्म में वे नज़र आई थी आज सेकेंडरी रोल और इसी फिल्म का एक गाना आप सबों के लिए। और ये गाना जाता है खास तौर पर आप तो मॉरिशस हमें सुन रहे हैं वैंकूवर कनाडा से। गुड संडे आफ्टरनून आपको भी जे जे लाल, नरेंद्र कुमार निंदी और कला राम करिगर। सो बस सर जी, थैंक यू फॉर योर मैसेज।

जाकेस कितने खूबसूरत थे ऐसे पुराने गाने। आज के तेज तरार समय में भी ये गीत दिल को एक अलग सुकून देते हैं ना, और यही वजह है कि गोल्डन एरा के सॉन्ग्स कभी ओल्ड नहीं होते, उसे कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, और वे हैं एवरग्रीन होते हैं। आशा पारेख जी की फिल्मों के गीतों में रोमांस था, सेलिब्रेशंस था, और सबसे बढ़कर था एक खूबसूरत इनोसेंस। और बहुत से लोग बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि एक्चुअली आशा पारेख बहुत लोगों की फेवरेट एक्ट्रेस हुआ करती थी, और आज बैक टू बैक जैसे हम उनको सोच रहे हैं, उनका जन्मदिन मनाया 2 अक्टूबर को, और उनके गाने आज चला रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है उनको। थैंक यू सो मच। और ऐसे में हम आशा करते हैं कि आशा पारेख के गानों के साथ आपका जो संडे है खुशगवार होगा, ब्यूटीफुल होगा, और आप खुश हो जाएंगे। और अगला गाना जो है, इसकी मांग आई है बहुत लोगों की ओर से। सबसे पहले हम ये गाना डेडिकेट करेंगे कुछ खास दोस्तों के लिए, और फिल्म है कति पतंग। लता जी की आवाज़ में आपने पहचान लिया होगा कि कति पतंग वाला जो जो फिल्म है, इसमें जो गाना है, हालांकि वो सैड था, दुखी लोग जो लोग होते थे ये गाना सुनना पसंद करते थे, मगर कभी कभी ऐसे गाने सुनकर मन को सुकून आता है। हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ज़िंदगी आखिर है क्या। बस इस गाने की मांग आई है शुमन खैये की जो है, हाँ जी, तो विमला जी हैं भावना के लिए, अवि, अक्षय, करिश्मा, दीदी सोना, करुणा, मानुदा, साधना, और उनकी जो जान है ना ऊपर है, आपको देख रहे हैं उनके चांद जी। और स्पेशली ये गाना हम दीदी के करना चाहेंगे, जी हाँ, हमारे जो जे लाल साहब हैं यहाँ पर, वो कनाडा से हमें सुन रहे हैं, और ये गाना वो मांग रहे हैं टू ऑल द लिसनर्स स्पेशली फॉर माधुरी 1 2 3 4। ओके, और उनको ये आशा पारेख बहुत पसंद है, एक्चुअली वे कह रहे हैं शी इज़ माय मोस्ट फेवरेट हीरोइन, वाओ। और उन्होंने यहाँ पर काफ़ी लिस्ट भेजा है जिस जो गाने उनको पसंद है आशा पारेख पर, मगर ये गाना आपके लिए होगा ही होगा आज के लिए। तो बस, न कोई उमंग है मेरी जिंदगी है क्या, बस एक गति पतंग है।

कौन जाने मैं क्या हूँ, सुनना चाहते हो? सुनो, मैं एक चांद हूँ जिसके माथे पे एक दाग है, मेरा दिल जलता हुआ चिराग है।

जो आज इधर कर उधर मैं किसी की नहीं, ये गाना वाओ सुपर्ब लता जी की आवाज में। और हम बात कर रहे हैं आज, आप किसी से बात कर रहे थे अभी हमें लिसनर्स से, और वे कह रहे हैं वे एक्ट्रेस नहीं, उसे कहेंगे ग्रेट ग्रेट लेजेंडरी एक्ट्रेस, क्योंकि उस जमाने में मेल एक्टर्स के साथ वे खड़े हुए और साथ में उनको ऐसे ऐसे वो फिल्मों में उनका किरदार रहा कि लोग जो हैं उनको बहुत पसंद करने लगे। और आशा पारेख जी ने हिंदी सिनेमा में कई यादगार फिल्मों के जरिए अपनी खास पहचान बनाई। उनकी लोकप्रिय फिल्मों में जब प्यार किसी से होता है, तीसरी मंजिल, कारवां, कटिपटंग, आया सावन झुमके और कई अन्य फिल्में शामिल हैं। हर फिल्म में उनका अलग अंदाज देखने को मिला। कहीं कभी कभी वे चुलबुली थी, कभी रोमांटिक, कभी इमोशनल और कहीं बेहद ग्रेसफुल। यही वर्सेटिलिटी उन्हें अपने दौर की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल करती है। हाँ जी, अब दो बदन मूवी का ये गाना मांगा है कुछ हमारे जो लिसनर्स हैं, तो ये जो गाना है आशा जी की आवाज़ में। और आशा पारेख पर पिक्चराइज ये गाना हमारी जो प्यारी सी खुशनुआ की आशा है उनके नाम जाता है, तो उनको आशा पारेख बहुत पसंद है आशा जी। और आशा जी कह रही हैं कि आजकल तो पितृपक्ष वो चल रहा है, तो पेरेंट्स की याद में, उनकी भैया की याद में ये जो गाना है उनकी चार बहनों की ओर से और जो थुदुदुस के सितोहल परिवार हैं उनकी ओर से। और एक मैसेज की ओर बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून आपको भी अनीता जी फिकॉन्फक से, और जो गाना आप मांग रही हैं इसी स्टाइल का गाना हम बजाने वाले हैं आशा पारेख पर पिक्चराइज, तो इसमें आपका नाम जोड़ देते हैं। तो वो कह रही हैं आप वेरी स्वीट सॉन्ग हमेशा की तरह, थैंक यू सो मच। तो ये गाना उनके सभी फ्रेंड्स के लिए, फैमिली, हमारे लिए भी, रेडियो मनोरंजन की टीम के लिए, फिल्म दो बदन का गाना है, मगर ये गाना जो आपने मांगा है ये नहीं है, बल्कि ये गाना आपके लिए भी अनीता जी। सो एंजॉय दिस शो, सुहाना सफर प्रोग्राम आपके लिए।

0: souris.
1: La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT.
2: संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। हम इस दोपहर के समाचार बुलेटिन की शुरुआत देश में पानी के भंडार की लगातार बिगड़ती स्थिति से करती हैं। वर्तमान में मॉरिशस समय पानी की उपलब्धता में करीब 30% की कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश की संभावना नहीं है, जिससे पानी की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। इस बीच सप्ताह संकट प्रबंधन समिति की बैठक होगी। आज मनाया जा रहा है विश्व पशु दिवस, जो हमारे हर जीव के प्रति जो हमें हर जीव के प्रति दया और करुणा का संदेश देता है। धार्मिक मान्यताओं में भी पशु पक्षियों को ईश्वर की रचना और सृष्टि का अहम हिस्सा माना गया है। इंसान और जानवरों के बीच का रिश्ता सदियों पुराना है, जो प्यार, विश्वास और अपनापन दर्शाता है। इसी मानवीय भावना को आगे बढ़ाते हुए आज का दिन हमें बेजुबान जीवों को देखभाल और सम्मान की याद जीवों की देखभाल और सम्मान की याद दिलाता है। इस वर्ष के लिए थीम रखा गया है सी द वर्ल्ड थ्रू देयर आईज, यानी उनकी आंखों से दुनिया को देखें। हर जीव ईश्वर की सृष्टि का हिस्सा है और उसे भी प्यार, सुरक्षा, सम्मान, समान अधिकार है। बेजुबान जानवरों की भावनाओं को समझना और उनके प्रति दया दिखाना हमारी इंसानी जिम्मेदारी है। और इसी संदर्भ में ही रोजेल में जानवरों के सम्मान और उनके प्रति करुणा को समर्पित एक समारोह का आयोजन किया गया। चार अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व पशु दिवस के अवसर पर आयोजित इस समारोह में जानवरों के लिए विशेष आशीर्वाद दिया गया ये आयोजन जानवरों के संरक्षक माने जाने वाली सेंट फ्रांसवा दासीज को भी समर्पित था। कई वर्षों से मॉरिशस सोसाइटी फॉर एनिमल वेलफेयर पशुओं के कल्याण और उनकी सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बेजुबान जानवरों को सुरक्षित और बेहतर जीवन देने के साथ साथ संस्था लोगों में उनके प्रति दया, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिए भी काम करती है। मॉरिशस 7 अक्टूबर को अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के आधिकारिक शुभारंभ की मेजबानी करेगा। ये अफ्रीकी संघ की पहल है, जिसका उद्देश्य अफ्रीकी वित्तीय बाजारों को मजबूत करना और महाद्वीप में पूंजी निवेश को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर अफ्रीकी संघ और संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। बुरुंदी के प्रधानमंत्री नेस्टो एंताउंतुई भी लॉन्च में शामिल होंगे। अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के मुख्यालय के लिए कई देशों के बीच प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया के बाद मॉरिशस का चयन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय पायलट कप्तान स्मिथ मचार को इसराइल के अगले स्वतंत्रता दिवस पर जश्न की मशाल जलाने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने फ्लाई दुबई के कप्तान से कॉकपिट के अंदर 30 सितंबर को हुई घटना के बारे में बात करने के बाद इनविटेशन दिया है। नेतन्याहू ने स्मिथ मचार की हिम्मत और सूझबूझ की तारीफ की और कहा कि वे भारत और इसराइल के बहादुर लोगों के असली हीरो और कप्तान स्मिथ की पूरी दुनिया के हीरो हैं। और उधर कनाडा के प्रधानमंत्री मैकोनी ने स्वीकार किया है कि उनकी सरकार ने अमेरिका की ओर से संभावित हमले की स्थिति के लिए भी तैयारी की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के कनाडा पर हमले का खतरा कम है और इसकी संभावना बेहद कम मानी जाती है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में हर संभावना पर विचार करना

0: उनकी जिम्मेदारी है। डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा को लेकर 51वां राज्य बनाने की बार-बार की इच्छा और अमरीकी टैरिफ नीतियों के बीच दोनों देशों के संबंधों में तनाव बढ़ा है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान की धन्यवाद। साथ रहिए प्रत्येक शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। नंबर 7 साइट्स एंड सर्विस कॉन ले व्यू रोजिल में, नंबर 7 साइट्स एंड सर्विस कॉन ले व्यू रोजिल में 85 साल के 85 ईयर्स ओल्ड की श्री हीरानंद गंगाराम जिन्हें बायराम के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है, उनकी अर्थी रोजिल कॉन ले व्यू सेंट फ्यूनेरिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए 1:30 बजे गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन ट्रीट एट 1:30 PM लालू सिरो बेलेर विशेष में, लालू सिरो बेलेर विशेष में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की बीबी हतेज मुचियालू जिन्हें छोटी मुचियालू के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज शाम 4 बजे उनके घर बिलियर वेसेश से उठाकर दफनाने के लिए दुफ्रे का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 4 PM कैस्ट्रेल रोड बनमेयर फ्लैक में 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड के जनाब अनवर हुसैन रामदीन जिन्हें बाई के नाम से बहुत ज़्यादा जानते थे कि इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज 2 बजे उनकी माँ जुबीदा रामदीन के घर बनमेया फ्लक से उठाकर दफनाने के लिए रिश्मा का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM पोलिवेजनी स्ट्रीट वाली दिपत में 81 साल के 81 ईयर्स ओल्ड के श्री विष्णु मोहन जिन्हें पंडित विष्णु के नाम से बहुत ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं, उनकी अर्थी आज 2:30 बजे उनके नाती विष्णु मोहन के घर वाले दुपत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए 2:30 बजे सिपाही भूले वाले दुपत की शमशान भूमि ले जा जाएगी। कमीशन टुडे 1:30 PM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

जहाँ 1:12 हुए हैं और दोस्तों रविवार की दोपहर है, संडे है, 4th of October 2026। आप अपना जन्मदिन मना रहे हैं, बर्थडे है, या फिर कोई सेलिब्रेशन है, आप कहीं पर जा रहे हैं, या फिर ऐसे घर बैठे हैं, काम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, या फिर बस रिलैक्स कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। थैंक यू सो सो सो मच दिल से। और आप लोग साथ देते हैं और हम आपको खुश करते हैं गानों द्वारा, और हम भी खुश हो जाते हैं जब आप खुश होते हैं। तो बस ये तो कारवां है, चलता रहता है। आप भी चाहिए, हम भी चाहिए एक साथ इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने के लिए। तो आपके मैसेजेस के लिए, आपके प्यारे प्यारे कॉल्स के लिए, आपकी प्यारी प्यारी बातें के लिए दिल तहे दिल से धन्यवाद। हाँ जी, जैसे हम कह रहे हैं घर में आराम का माहौल होगा, कहीं अभी लंच ले रहे हैं परिवार के साथ या फिर अकेले, कहीं फैमिली के साथ बातें होंगी, कुछ लोग घूमने जा रहे हैं, कुछ लोग जैसे कि हम जानते हैं रविवार को संडे को बहुत से लोग बाजार जाते हैं, लाफुआ जाते हैं, जहाँ भी हो बस आप खुश रहिए और हमारा साथ देते रहें। और कहीं कोई अकेला बैठा होगा और पुराने गीतों के साथ अपनी यादों को ताज़ा कर रहा होगा, यही तो रेडियो की खूबसूरती है। हम दिखाई नहीं देते लेकिन दिलों तक ज़रूर पहुंचते हैं। आप जहां भी हैं, मॉरिशस के किसी भी कोने में या आउट ऑफ मॉरिशस, अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि सुहाना सफ़र अभी जारी है मेरे दोस्त। और माइक पर है देवीना।

आज की स्पेशल सेगमेंट में हम याद कर रहे हैं उस अदाकारा को जिसने अपनी मुस्कान से पर्दे को रोशन किया, आशा पारेख। और अब बारी है एक और शानदार गीत की, और फिल्म है समाधि, 1972 की मूवी, आशा जी की आवाज़ में। और ये गाना खास तौर पर हमेशा की तरह हमारा साथ देती रहती हैं रिविया जोगपा की माला जी, और ये गाना जाएगा फॉर केविन, किरण, कनील, कबीर, कनीश, सत्यम, शिव, और खास तौर पर हमारे लिए। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून आपको अनीता जी, जो हैं वो मौदा ब्याह वाली अनीता हैं, और उन्होंने कुछ कहा है हमसे, देखते हैं कि क्या कह रही हैं अपने मैसेज में। हाँ जी, तो अनीता जी, जो गाना आपने मांगा वो तो हमने चला दिया, तो बस अगले गाने में आपका नाम शामिल करते हैं। मोराबिया की अनीता, करुणा, अमृता, सभी दोस्तों के लिए और सभी परिवार के लिए, तो ये गाना आप सबों के लिए।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: जहाँ फिर एक बार समाधि मूवी का गाना, इसकी फरमाइश आई है और पाए से नंदा जी आप सुन रही हैं, कल्याणी जी भी हैं थ्योरी से, ये गाना आप सुनना चाहते हैं और सभी परिवार के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए थैंक यू सो मच। और ये गाना जाएगा फॉर सोना जी, सोना गंगादू जी, और ये गाना उनकी उनके बेटे बहू और बेटी स्वीटी के लिए।

जो वन ऑफ द बेस्ट मूवी ऑफ आशा पारेख जी 80s में जब आई, तो ये गाना जो है इस फिल्म में है बिन तेरे बिन फेरे हम तेरे, किशोर दा की आवाज़ में। और ये गाना खास तौर पर साजिद जी के लिए रोजिल से आज आपसे बात करके अच्छा लगा। सो सभी लिसनर्स के लिए, और वे कह रहे हैं उनको जो आशा पारेख के बारे में बहुत कुछ हमने एक साथ डिस्कस किया। सो वेटरन एक्ट्रेस हैं, उनकी यादें आज भी लोग याद करते हैं, उनके गाने गुनगुनाते हैं। बस बिन फेरे हम तेरे, खास तौर पर साजिद जी की जो ओल्ड क्लासमेट है सरोवर जी कनाडा में हैं।

जहाँ बिन फेरे हम तेरे, ये था ब्यूटीफुल सा गाना किशोर दा की आवाज़ में, मस्त आवाज़ में, डर डर भरा वो भरी आवाज़ थी। और आप सुन रहे हैं और एम फ्री रेडियो मनोरंजन। और जितने लोग हमसे जुड़े हैं, हम जानते हैं बहुत से लोग हमें फ़ोन नहीं करते, मैसेजेस नहीं भेजते, मगर हमें सुनते हैं हमेशा। वो इस इंतज़ार में रहते हैं कि कब हमारा शो आए। और वैसे संडे आफ्टरनून को जब ऐसे गाने चलते हैं ना, तो आपका जो संडे है खुशगवार हो जाता है, बोरिंग नहीं होता है। और आप जैसे कहते हैं ना, वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पर लाइफ बिल्कुल ब्यूटीफुल था, खूबसूरत था। और क्या करें, ज़िंदगी ऐसी है, कभी कभी हम बचपन में चले जाते हैं, जवानी में चले जाते हैं, और कभी कभी उनकी याद आती है जो हमारे बीच नहीं रहे, जो हमारे साथ नहीं रहे, जो कुछ हमारे दिल में है, बस उनको याद करते हैं इस संडे आफ्टरनून को। तो अतीत के पन्ने में आज हम बात कर रहे हैं आशा पारेख जी की, और उनके चाहने वाले करोड़ों हैं। और आज आप लोग उनके जिस गाने हैं, उनके उनके मेमोरीज़ को रिफ्रेश कर रहे हैं हमारे साथ सुहाना सफ़र प्रोग्राम में, और मैं हूँ देवीना, आपका साथ दे रही हूँ। वैसे ये जो अगला गाना है, इसकी मांग आई थी पहले मगर हमने ढूंढा नहीं था, अब ढूंढ लिया है। दो बदन मूवी का गाना है। और जब आशा पारेख की बात होती है, नाच गाने के अलावा उनकी जो सात गाने हैं, दुख भरी जो भरे गाने हैं, ये भी लोगों को बहुत पसंद आया। जैसे एक दो गाने हमने चला दिए, और एक और गाना आ रहा है। ये उनके लिए जो हमारे बीच नहीं रहे या हमसे दूर चले गए हैं, लता जी की आवाज़ में है। और ये गाना एक्चुअली श्यामा रघुनंदन जी खोंगोप की है, ये गाना उनको बहुत पसंद है। और ये गाना उनके सभी परिवार के लिए, ख़ास तौर पर उनके भैया जय प्रकाश के लिए, उनकी भाभी हैं और नम्रता केशव युधिश, उनकी सहेलियां हैं वीना रामपोल, विशन डुकी, नंदिनी ओकलू, और साथ में उनके जो सभी परिवार हैं जिनकी सहेलियां हैं, और ख़ास तौर पर हमारी टीम के लिए ये गाना। नाम जोड़ते हैं रोजबेल की, मीला जोईकरन जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो मीला जी, ये गाना आपके लिए, ख़ास तौर पर आपकी बेटी रीटा और दामाद विकास के लिए। उनकी याद आई पर वो नहीं आए, वो दिल में रहते हैं, हम उनको याद करते हैं, और उनकी याद में बस यही गाना।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: जा कितनी फ्रेश फीलिंग है इस गीत में. ये तो गोल्डन एरा की खूबसूरती थी. शब्द सरल, धुन दिलकश और आवाजें सीधे दिल तक पहुंचने वाली. और स्क्रीन पर आशा पारेख जी की मुस्कान, बस फिर क्या कहना. और ये गाना था सुनो सजना फ्रॉम द मूवी आए दिन बहार के. स्पेशली गोज टू विमला जी ऑफ कांगो. और साथ में है नुवेल कुवैत की साइदा जी. आदाब, आपको ये गाना आपके लिए भी था. अब कुछ अलग सा गाना हम पेश करने वाले हैं. ये हैं मुकेश साहब की आवाज़ में और साथ में हैं लता जी. और इस गाने की मांग की है लेस्पेरेंस ट्रेबुशे से नजीमा सोहन जी. और अपने पति देव के साथ हैं मनोज जी. ये गाना आपके लिए, सभी सोहन परिवार के लिए और सभी लिसनर्स के लिए.

0: RM3 Radio.
1: जहाँ इसे कहते हैं प्योर मास्टरपीस और ये गाना अमंग द फर्स्ट मूवीज ऑफ आशा पारेख जी और इसकी मांग आई है बाबू अनाटवा जी शॉप में है और अभी लंच किया और साथ में प्रोग्राम सुन रहे हैं हमेशा एवरी आज एवरी संडे सो थैंक यू बाबू जी और ये गाना वो जिस जब प्यार किसी से होता है और देवानंद साहब भी दिखे थे आशा जी के साथ 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार का और वैसे भी आपका जो जर्नी है आज का जो दिन है म्यूजिकल हो रहा है बहुत लोग बहुत खुश हो रहे हैं ऐसे गाने सुनकर बस ऑन एंड ऑफ ऐसे गाने लेकर आते हैं हर रविवार को किसी न किसी एक कलाकार पर यानी कि 60s, 70s, 80s के कलाकारों पर हम खास तौर गाने बजाते हैं और इन बिटवीन आपके भी कुछ पसंदीदा गाने अगर हो सके तो हम जोड़ देते हैं तो बस आज लोग जो हैं बहुत खुश हो रहे आशा जी के गाने सुनकर तो बस आपकी जो मांगे हैं सराखों पर और अगले गाने की ओर बढ़ते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म है घराना और इसमें भी जैसे ये कटबोन से बीना जी हमें फ़ोन किया और कह रही हैं प्रोग्राम दिलचस्प है थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन आप जो अप्रिशिएट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे प्रोग्राम चलाने के लिए सो बस इस गाने में आप कह रही हैं या इसमें आशा जी गीत नहीं गा रही है मगर राजेंद्र कुमार साहब आशा जी की तारीफ कर रहे हैं आपने अंदाजा लगा लिया कौन सा गाना है हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं और देवानंद साहब जो हैं रिव्या चिपस से हैं पहली बार उनसे बातें की थैंक यू सो मच देवानंद जी आपने इतनी कोशिश एफोर्ट किया हमें कॉल करने के लिए सो ये गाना भी आपके लिए देवानंद जी और रिव्या चिपस सभी परिवार के लिए साथ में कास्टेल से अंजनी शिवराज जी सो सॉरी हम और गाना शामिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2 बजे के बाद हम 90s वाले गाने पेश करने वाले हैं कुमार सानू साहब और साथ में अलका याग्निक जी की आवाज़ों में कुछ रोमांटिक गाने हम पेश करेंगे अभी के लिए इस गाने में आई एम श्योर ये गाना आपको पसंद आएगा अंजनी जी सो बस इसको आप एंजॉय कीजिए फिल्म है घराना हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं अगर आपके दिल में कोई हसीना है कोई है बस उनको याद कीजिए और ये गाना गुनगुनाइए किरण पुरी जी हमें मैसेजेस भेज रहे हैं और थैंक यू सो मच कि आप हमें इतने जो डिटेल्स दे रहे हैं और वैसे जैसे सब लोग कहते हैं कि आशा जी ने शादी नहीं की पर उनके चाहने वाले हजारों थे कोई बात नहीं वे अपनी ज़िंदगी में खुश रही यही तो सबसे बड़ी बात है और वहाँ पर वैंकूवर में बहुत देर हो गई है फिर भी आप कह रहे हैं द प्रोग्राम द शो इट्स वर्थ लूजिंग

0: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो
1: तो हम चलते हैं। अच्छा तो हम चल
2: जी, हम चलेंगे नहीं, बस इस प्रोग्राम में रुकावट डालेंगे क्योंकि आशा पारेख स्पेशल अब खत्म हो गया। एक नाम, एक दौर, एक खूबसूरत एहसास और वो अदाकारा हमने याद किया, कैसे अदाकारा को जिसके मुस्कान में मासूमियत थी, जिसके अंदाज में एलिगेंस थी, जिसके डांस में ग्रेस था और जिसकी फिल्मों में उनके गीत जो है आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। लेकिन याद रखिए, हम हमेशा उनको याद रखेंगे और हमेशा उनके जो गाने हैं याद रहेंगे। रविवार की दोपहर चाहे कितनी भी छोटी हो, अगर उसमें अच्छे गीत और अच्छी यादें हो तो वो हमेशा सुहाना सफ़र बन जाती हैं। तो बस हमारे और आपकी मुलाकात होगी 2 बजे के समाचार के बाद।

0: आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अशिता के साथ। आपको नमस्कार अशिता।
1: नमस्कार हंसिनी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 157वीं जयंती उसकी मनाई गई। इतने साल बाद आज भी उनके सिद्धांत दुनिया भर में सत्य अहिंसा और दयावान जैसे मूल्यों को प्रोत्साहित करने के प्रासंगिक बने हुए हैं। बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए परंपरानुसार इस बार भी लावांचुया गांधी भवन में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। आपको हम याद दिला देते हैं कि लावांचुया गांव में पिछले 1947 से ये परंपरा कायम है। अहिंसा के दूत माने जाने वाले महात्मा गांधी की जयंती हर साल की तरह एक भव्य समारोह के साथ मनाया गया। उनके आदर्शों को याद करते हुए उनकी अर्ध प्रतिमा पर पुष्प मालाएं चढ़ाई गईं। इस अवसर के मुख्य मेहमान भारतीय उच्चायुक्त ने वर्तमान मॉरिशन समाज में महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गांधी जी के सिद्धांत विशेषकर विविधता के प्रति सम्मान, लोकतंत्र और आपसी सद्भाव जैसे मूल्य मॉरिशस जैसे बहुसांस्कृतिक समाज की ताकत बने हुए हैं। और आज जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI कुछ ही सेकंड में एक कहानी तैयार कर सकती है, ऐसे में सवाल उठता है कि लेखक के लिए क्या बाकी रह जाता है? उसकी कल्पना, उसके अनुभव और उसकी संवेदनशीलता और शायद वह जुड़ाव पैदा करने की क्षमता जिसे कोई मशीन पूरी तरह दोहरा नहीं सकती। थुरदुस में आज आयोजित पुस्तक महोत्सव में लेखक, प्रकाशक और पाठक एक ऐसी चीज के इर्द गिर्द जुटे जो अब भी पूरी तरह डिजिटल दुनिया के सामने कायम है, वह है किताब। मॉरिशस 7 अक्टूबर को अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के आधिकारिक शुभारंभ की मेजबानी करेगा। ये अफ्रीकी संघ की पहल है जिसका उद्देश्य अफ्रीकी वित्तीय बाजारों को मजबूत करना और महाद्वीप में पूंजी निवेश को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर अफ्रीकी संघ और संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। बुरुंडी के प्रधानमंत्री नेस्टो एंताहोंतुई भी लॉन्च में शामिल होंगे और अफ्रीका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के मुख्यालय के लिए कई देशों के बीच प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया के बाद मॉरिशस का चयन किया गया है। रोजेल में जानवरों के सम्मान और उनके प्रति करुणा को समर्पित एक समारोह का आयोजन किया गया। 4 अक्टूबर को यानी कि आज मनाए जाने वाले विश्व पशु दिवस के अवसर पर आयोजित इस समारोह में जानवरों के प्रति विशेष आशीर्वाद दिया गया। ये आयोजन जानवरों के संरक्षक माने जाने वाले सेंट फ्रांसवा दासीज को भी समर्पित था। कई वर्षों से मॉरिशस सोसाइटी फॉर एनिमल वेलफेयर एमसो पशुओं के कल्याण और उनकी सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बेजुबान जानवरों को सुरक्षित और जीवन देने के साथ साथ संस्था लोगों में उनके प्रति दया, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिए भी काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्राजील में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण में लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा चौथी बार राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। करीब 4 दशक पहले पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले लुला के नाम पर ये 7वीं बार मतदान हो रहा है। 2022 में जीत के बाद उन्होंने कहा था कि उनका तीसरा कार्यकाल आखिरी होगा और वह नए नेताओं के लिए रास्ता बनाएंगे, लेकिन इस बार वह दक्षिण पंथी उम्मीदवार फ्लावियो बोल्सोनारो के खिलाफ मैदान में है। चुनाव से पहले सर्वेक्षणों में दोनों उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर दिखाई जा रही है। और ब्राजील में आपको हम बता देते हैं कि कड़े राजनीतिक ध्रुवीकरण के बीच मतदाता राष्ट्रपति, राज्यों के गवर्नरों और सं

0: सिंधिया तथा क्षेत्रीय सांसदों का चुनाव कर रही हैं। देश भर में 158 मिलियन से अधिक पंजीकृत मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हम शुभ समाचारों की ओर। News on NBC Play and NBC.mu. शुभ समाचार सुनिए। रायरोड रिविया जोंपा में 88 साल की 88 ईयर्स ओल्ड की रसूल बी अली बोकस पैदाश नाम फरीदान और जिन्हें रसूल बी के नाम से ज़्यादा जानते थे इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज शाम 3:30 बजे इनके बेटे अहद अली बोकस के मकान रिविया जोंपा से उठाकर दफनाने के लिए पलास्को का कब्रिस्तान ले जाएगा। फ्यूनरल जूडियर हॉफ 3 PM पासबानियों पायोत फाकुआ कैट्रोबोन में बावन साल के 52 ईयर्स ओल्ड के श्री राजीवी रामखिलावन की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 5 बजे उनके घर पायोत वाकुआ कैट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुडे एट 5 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
2: You're listening to RM3 Radio, मन

जाफी से हमारा प्यार भरा नमस्कार है, प्रणाम है, गुड आफ्टरनून और आदाब। बस आप सुन रहे हैं MBC आर एम फ्री रेडियो मनोरंजन और मैं हूँ दीविना और लेकर आई हूँ मोहब्बत, यादों और संगीत से सजा हुआ एक बेहद खूबसूरत सुहाना सफर एक घंटे के लिए। आज का ये एक घंटा उन खूबसूरत यादों के नाम, जब मोहब्बत का इजहार आंखों से होता था, जब चिट्ठियों में जज्बात दिखे जाते थे और जब रेडियो पर बजता था एक रोमांटिक गीत तो दिल अपने आप किसी खास इंसान को याद करने लगता था और ठक ठक करता था। आज सफ़र होगा 90s की सुनहरी दुनिया का, जहां दो आवाज़ें थी, कुमार सानू जी की साथ में दिलकश आवाज़, रेशमी आवाज़ और अर्का याग्निक की मीठी सुरीली और जादुई आवाज़। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मोहब्बत भी होगी, यादें भी होगी, दर्द भी होगा और संगीत भी होगा बेहतरीन। तो अर्का याग्निक, कुमार सानू साहब के 90s वाले रोमांटिक मजकल गाने आप सभी के लिए। बस अगर आपको कोई गाना डेडिकेट करना हो तो बस आप मैसेजेस भेज सकते हैं या फिर फ़ोन भी कर सकते हैं और आप लोग इस समय बस आराम कर रहे हैं, इस गाने को एंजॉय कीजिए। फिल्म है नाजायज़, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। हाँ जी, बेहद बेइंतहा प्यार है हमारे सभी लिसनर्स का।

0: RM3 Radio.
1: जा नॉस्टैल्जिक मोमेंट ऑफ लाइफ 90s का सफर हम कैसे भूल सकते हैं। और बहुत से लोग ये गाने सुनकर बैक चले गए हैं 90s में, जब कुछ ना कुछ स्पेशल हुआ था। उस समय क्या हुआ था? प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, दर्द हुआ था, जो भी हुआ था, यहाँ पर सब कुछ है आपके लिए। हर तरह के गाने स्वीट स्वीट 90s में। और आज है स्पेशल कुमार सानू साहब, आका याग्निक जी, और उनकी जो जोड़ी है ना, सब लोगों को बहुत भाता है। और उन दोनों को सुनकर ना ऐसा लगता है कि हमारा ही दिल कुछ कह रहा है उनकी आवाज़ के ज़रिए। और ये उनके जो गाने हैं सिर्फ गीत नहीं है, बल्कि 90s की मोहब्बत की एक पूरी कहानी होती है। कुमार सानू, आका याग्निक की आवाज़ों में वो मिठास थी कि गीत खत्म होने के बाद भी उसकी धुन दिल में देर तक रहती थी। और दोस्तों, 90s की सबसे खूबसूरत बात यही थी, गीत सुना नहीं जाता था, महसूस किया जाता था दिल से। और जो

आने थे दिल में सीधे उड़ जाते थे और कभी बाहर नहीं निकलते थे। चलिए इसी एहसास को आगे बढ़ाते हैं। फिर एक बार अलका जी, कुमार सानू जी, हाँ मैंने भी प्यार किया है, ये 2002 की मूवी थी और ये जो गाना है, हरीश बाबू की मांग पर। हरीश बाबू हमेशा रोमांटिक मूड में रहते हैं। हरीश जी, लंच हो गया आपका, अब बस आप म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हैं, साथ में लंच ले रहे थे अब और आराम ले रहे हैं, तो बस आपके किसी खास दोस्त के लिए, साथ में सुदेवी जी हैं मौका की, तो बस ये गाना आप लोगों के लिए।

सैपिया के रविंद जी, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस. आप सुन रहे हैं हमेशा हमको सुबह. रविंद जी, ये गाना आपके लिए और आपकी बहनें हैं मीता और गीता.

जहाँ गाना ऑल्सो गोज टू प्रकाश वेदी जी, बेल्जियम से हैं, वे कह रही हैं नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच, वैसे सिलेक्शन भी बहुत अच्छी है, थैंक यू प्रकाश वेदी जी, हेलो टू यू एंड हैव ए नाइस डे।

0: जहाँ दोस्तों अब हमारा ये खूबसूरत एक घंटा वाला प्रोग्राम अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है। कुमार सानू और कयाकनिक की आवाज़ों के साथ आज हमने फिर से महसूस किया 90s की वो मासूम मोहब्बत, वो मीठी तकरार, वो इंतज़ार और वो खूबसूरत एहसास जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। कहते हैं ना, कुछ धुनें कानों से नहीं सीधे दिल से सुनी जाती हैं, और 90s की ये रोमांटिक गीत उन्हीं दिनों में से है। तो मैं हूँ देविना और आपसे देती हूँ इजाज़त। सुहाना सफर प्रोग्राम ख़त्म हुआ। अपनी मुलाकात तक मुस्कुराते रहिए, संगीत सुनते रहिए और अपने दिल में मोहब्बत को हमेशा जिंदा रखिए। बस हमारे बाद आने वाले हैं अजय प्रताप सिंह, उनका साथ दीजिएगा। ऐसा भी होता है प्रोग्राम में। लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। बस हमारा साथ देते रहें। थैंक यू।
1: La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay où que vous soyez, à la maison, au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, mbc.mu, toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402 8000.
2: RM3 Radio.

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अशिता के साथ। आपको नमस्कार अशिता।
1: एक बार फिर नमस्कार, संक्षिप्त समाचार में स्वागत है आप सभी का। बात करती हैं बच्चों की नजर से सड़क सुरक्षा की। पैदल चलने वाले हों या यात्री, बच्चे सड़क पर सबसे संवेदनशील उपयोगकर्ताओं में शामिल हैं। मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और ट्रैफिक मैनेजमेंट रोड सेफ्टी यूनिट जल्द ही एक ऐसा ऐप शुरू करने जा रहा है जिसका उद्देश्य कम उम्र से ही बच्चों में सड़क पर सुरक्षित व्यवहार की आदत विकसित करना है। फिलहाल देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में हर सप्ताह 50 मिनट बच्चों को सड़क सुरक्षा के बुनियादी नियमों की जानकारी दी जाती है। हमारी वयस्क दिनचर्या में कुछ पल रुकना, हमारे व्यस्त दिनचर्या में कुछ पल रुकना, कुछ नया बनाना और एक दूसरे के साथ समय बिताना हमेशा आसान नहीं होता। पीएफओ में रविवार को आयोजित कॉल्म की चौथी कलात्मक मुलाकात ने प्रतिभागियों को ऐसे ही कुछ सुकून भरे पल दिए। ये दिन सिर्फ मिलकर कुछ बनाने का नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़ने और साथ होने का अवसर भी बना। यहाँ हर कोई अपनी रचनात्मकता और अपने अंदाज के साथ पहुंचा। कई हाथ मिलकर कार्डबोर्ड से एक घर तैयार करते, कोई काटता है, कोई जोड़ता है तो कोई दूसरों की मदद करता है और इस पूरी गतिविधि के दौरान बातचीत और आपसी मेल जोल भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 187वीं जयंती उसकी मनाई गई। इतने साल बाद आज भी उनके सिद्धांत दुनिया भर में सत्य, अहिंसा और सद्भावना जैसे मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रासंगिक बने हुए हैं। बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए परंपरा अनुसार रविवार इस बार भी लावांचिया गांधी भवन में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। लावांचिया गांव में पिछले 1947 से ये परंपरा कायम है। अहिंसा के दूत माने जाने वाले महात्मा गांधी की जयंती हर साल की तरह एक भव्य समारोह के साथ मनाया गया। उनके आदर्शों को याद करते हुए उनकी धैर्य, उनकी अर्ध प्रतिमा पर पुष्प मालाएं चढ़ाई गई। इस अवसर के मुख्य मेहमान भारतीय उच्चायुक्त ने वर्तमान मॉरिशस समाज में महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गांधी जी के सिद्धांत विशेषकर विविधता के प्रति सम्मान, लोकतंत्र, सहनशीलता और आपसी सद्भाव जैसे मूल्य मॉरिशस जैसे बहुसांस्कृतिक समाज की ताकत बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कोनी ने स्वीकार किया है कि उनकी सरकार ने अमेरिका की ओर से संभावित हमले की स्थिति के लिए भी तैयारी की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के कनाडा पर हमले का खतरा कम है और इसकी संभावना बेहद कम मानी जाती है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में हर संभावना पर विचार करना उनकी जिम्मेदारी।

0: जारी है। डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बार बार की इच्छा और अमेरिकी टैरिफ नीतियों के बीच दोनों देशों के संबंधों में तनाव बढ़ा है। हालांकि 2025 में ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका द्वारा कनाडा के खिलाफ सैन्य बल इस्तेमाल करने की संभावना बेहद कम है और वह अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आर्थिक दबाव जारी रखेंगे। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के धन्यवाद और नमस्कार।
1: News on NBC Play and NBC.mu. Music all day long.
2: Radio Masti. Sunte raho.
3: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2.
4: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
5: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

क्या हो रहा है इस दुनिया में, क्या जो हो रहा है वो सही हो रहा है। इंसान इंसानियत भूल चुका है, वो केवल अपने मतलब के लिए जी रहा है। कौन समझाएगा इंसान को, कौन समझाएगा इंसान को जब इंसान बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। इन्हीं सब सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है, योर वीकली प्रोग्राम ऑन ऑरेंज फ्री रेडियो मनोरंजन, शाम के 3 से 4 बजे के बीच। और ऐसे में स्वीकार कीजिए अपने होस्ट और दोस्त और जय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज है संडे की शाम, संडे 4 अक्टूबर 2026। अद्भुत सनसनी खबरें हम लाए हैं आप लोगों के लिए अभी से लेकर शाम के 4 बजे तक ऑन MBC और एम फ्री रेडियो मनोरंजन।

जब हम एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो एरोप्लेन द्वारा जाते हैं पर कभी-कभी एरोप्लेन में इंसिडेंट भी हो सकता है जी हां हाल ही में दुबई फ्लाइट में हुई एक घटना जी हां विमान दुबई से तेल अवीव जा रहा था अंततः सऊदी अरबिया के ताबुक इलाके में फ्लाइट दुबई FZ1073 दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तेल अवीव का बेन गुंजरन एयरपोर्ट तारीख 30 सितंबर 2026 विमान में लगभग 170 या 180 लोग सवार कर रहे थे अलग अलग रिपोर्टों में संख्या की गणना थोड़ी अलग दी गई है उड़ान के दौरान कॉकपिट में एक पायलट ने दूसरे पायलट पर हमला किया ओएमजी रिपोर्टों के अनुसार कप्तान स्मिथ मछार पर हमला हुआ हमले के दौरान विमान अचानक बहुत तेजी से नीचे गिरने वाला था लगभग 14,000 फीट करीब 4,260 मीटर की ऊंचाई से 30 सेकंड से भी कम समय में कम हुई विमान ने पहले 7,790 इमरजेंसी कोड और बाद में 7500 यानी अनलॉफुल इंटरफेरेंस हाईजैकिंग संकेत देने वाला कोड प्रसारित किया इससे सुरक्षा एजेंसियों में बड़ा अलर्ट हुआ और हमले के बाद कप्तान घायल होने के बावजूद कॉकपिट का दरवाजा खोलने में सफल हुआ इसके बाद यात्रियों और क्रू ने हमलावर को काबू करने में मदद की विमान में मौजूद अतिरिक्त ऑफ ड्यूटी पायलट से नियंत्रण संभाला और उसे सऊदी अरबिया के ताबुक एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग कराया इससे विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया कुछ क्रू सदस्य घायल हुए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया बाद की रिपोर्टों में आरोपी को पायलट की पहचान हुई ओमानी नेशनल के रूप में की गई अधिकारियों के अनुसार उसे पहले ओमान में सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण उड़ान भरने से रोका गया था हालांकि इन दावों पर उनकी भर्ती से जुड़े सवालों की अभी जांच चल रही है 3 अक्टूबर को यूएई अधिकारियों ने कहा कि कॉकपिट में इस्तेमाल किया गया क्रश आर्क्स था और घटना को संभावित टेररिस्ट आग के रूप में जांचा जा रहा था हालांकि अंतिम मोटिव और पूरी घटना की परिस्थितियां आधिकारिक जांच पूरी होने के बाद ही निश्चित होगी घायल कप्तान स्मिथ मछार भारतीय नागरिक है रिपोर्टों के अनुसार गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोलने और विमान को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी बहादुरी की सराहना की और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे अभी विमान दुर्घटना कहना सही नहीं होगा विमान क्रैश नहीं हुआ था यह मिड एयर कॉकपिट अटैक अटेम्प्टेड टेक ओवर जी हां अटेम्प्टेड टेक ओवर की घटना थी जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग हुई यूएई की आधिकारिक जांच अभी जारी है सो कभी-कभी हम सफर

रहते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, कुछ लोग पढ़ाई के लिए, कुछ लोग काम के लिए, तो कुछ लोग परिवार के साथ घूमने जाते हैं। सफर के दौरान क्या हो सकता है क्या नहीं, यह कोई नहीं बता सकता। और आपने देखा भी यहाँ पर कि यह फ्लाइट अच्छी तरह से जा रहा था कि अचानक कॉकपिट में एक पायलट ने दूसरे पायलट पर हमला कर दिया। और अगर वह दूसरा पायलट जो घायल था, अगर वो कंट्रोल खो देता तो यह एयरप्लेन क्रैश हो सकता था, सभी लोगों की जान जा सकती थी। पर जब रब साथ में है, भगवान हमारे साथ है, तो कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। और शायद यह भगवान का डिसीजन था, भगवान का निर्णय था कि सभी लोग जो है बच गए। सो जब भी हम सफ़र करते हैं विदेश में या कहीं जा रहे, तो हमेशा भगवान का नाम है, भगवान से प्रार्थना करें कि जिस फ्लाइट में हम जा रहे हैं हमारा जो सफ़र है वो सफ़र अच्छी तरह से बीते और कोई दुर्घटना ना हो।

दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जिन्हें जिनसे हम हमें भय लगता है, हमें डर लगता है। कोई कॉकरोच से डरता है तो कोई स्पाइडर से डरता है। और स्पाइडर के बारे में, जी हाँ, स्पाइडर जिसे हम भोजपुरी में मकरा कहते हैं या आम लैंग्वेज में मकरा, उसे हिंदी में मकरी कहते हैं। और तो चलिए मकरा के बारे में आपको बताते हैं। और मकरा जो है उसका लाइफ साइकिल, जीवन काफ़ी रोचक है उसका लाइफ साइकिल। अलग अलग प्रजातियों में थोड़ा अंतर होता है, लेकिन सामान्यतः इसका जीवन इस तरह से है। मादा मकरा जो है मेटिंग के बाद अंडा देती है। वह अंडों को अक्सर सिल्क यानी रेशम से बने एग साक में सुरक्षित रखती है। और एक एग साक में कुछ से लेकर सैकड़ों अंडे हो सकते हैं। और स्पाइडरलिंग्स यानी कि बच्चे, अंडों से बहुत छोटी मकड़ियाँ निकलती हैं जिन्हें स्पाइडरलिंग्स कहते हैं। शुरुआत में वे अपने माता पिता जैसे दिखती लेकिन बहुत छोटी होती है। कई प्रजातियों में स्पाइडरलिंग्स हवा के सहारे सिल्क की महीन स्ट्रेंस छोड़कर दूर तक फैलते हैं। इसे बालूनिंग कहते हैं। मकड़ी का शरीर बाहर से कठोर एक्सोस्केलेटन से ढका होता है, इसलिए जैसे जैसे वह बढ़ती है पुरानी स्किन को निकालकर नई स्किन बनाती है। इस प्रक्रिया को मोल्टिंग कहते हैं। युवा मकड़ी अपने एडल्ट आकार तक पहुंचने से पहले कई बार मोल्ट कर सकती है। परिपक्व होने के बाद मकड़ी एडल्ट बनती है। अब उसका मुख्य उद्देश्य भोजन प्राप्त करना और प्रजनन करना होता है। मकड़ियाँ अलग अलग तरीकों से शिकार करती है, जाल बनाकर, शिकार का पीछा करके, घात लगाकर या छलांग लगाकर। वे आमतौर पर कीड़े और दूसरे छोटे एंटीरोपोड्स खाती है। नर मकड़ी मादा को खोजता है। कई स्पीसीज में नर को सावधानी से अप्रोच करना पड़ता है क्योंकि मादा उसे शिकार समझकर खा भी सकती है। हालांकि यह हर स्पाइडर स्पीसीज में नहीं होता है। अपने पेडिपाल्प्स नामक विशेष अंगों में स्पर्म ट्रांसफर करता है और उसका उपयोग मादा तक स्पर्म पहुंचाने के लिए करता है। मेटिंग के बाद मादा अंडे देती है और एक साक बनाती है। अंडों से नए स्पाइडरलिंग्स निकलते हैं और पूरा साइकिल शुरू हो जाता है। यह स्पीसीज पर बहुत निर्भर करता है। कई छोटी मकड़ियां कुछ महीनों से एक दो साल तक जीवित रहती है, जिनका लाइफ स्पैन है 1 to 2 years, जो मकराम कहते हैं वो एक दो साल तक केवल जीते हैं। जबकि कुछ नई बड़ी स्पेसीज कई साल तक जीती है। कुछ तारांतुलास की मादाएं 10 या 20 साल तक अधिक जीवित रह सकती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि एग स्पाइडरलिंग, कई बार मोल्टिंग, एडल्ट मेटिंग एग्स और नया स्पाइडरलिंग होता है। सो यह जो स्पाइडर होता है और ये जो है जानलेवा नहीं है, जो नॉर्मल स्पाइडर्स जो

मकरा जिसे कहते हैं, जिसे मॉरिशस में मकरा होता है, घर के अंदर या किचन में या कहीं पर भी या केव में, तो वो लोग खतरनाक नहीं होते, पर दूसरे देशों में कुछ ऐसे मकरे हैं जो बहुत जानलेवा हो सकते हैं। पर मॉरिशस में जो मकरा है जो हमारे घर में होता है, घर के सीलिंग में, सो वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, बस हम उसे देखकर डर जाते हैं। और आपको बता दें कि इन लोगों का लाइफ स्पान होता है 1 or 2 years, और हमने तो देखा है कि जब घर में मकरा आ जाता है तो लोग क्या करते हैं, या तो झाड़ू से मारते हैं या चप्पल से मारते हैं। पर ये हानिकारक जीव नहीं है जिससे हमने आपको बताया। वह दुनिया में ऐसा भी होता है, दुनिया में ऐसा भी होता है।

दोस्तों हर साल 5 अक्टूबर को मॉरिशस में हम मनाते हैं टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस। अब शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं? शिक्षक हमारे जीवन के केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते हैं बल्कि हमें अनुशासन, संस्कार, सही निर्णय लेने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शिक्षा देते हैं। माता पिता के बाद शिक्षक ही अक्सर बच्चे के व्यक्तित्व और भविष्य का आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और स्कूलों में और कॉलेजों में जो है इस दिन पढ़ाई नहीं होती है, अध्यापक और स्टूडेंट्स घर पर रहते हैं, पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए अपने अध्यापक के घर जाते हैं, उन्हें तोहफा उपहार देते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और जब शिक्षक दिवस के बारे में बात हम करें तो हमारे पहले शिक्षक जो है हमारे माता पिता है, हमारे जो माता पिता है वो हमारे पहले गुरु है, तो सबसे पहले वो हमारे शिक्षक हैं। उसके बाद जब हम प्री प्राइमरी स्कूल जाते हैं, प्राइमरी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर भी अध्यापक लोग से मिलते हैं और ये जो अध्यापक है ये हमारी किस्मत को बदल देते हैं, हमारे वो हमें मार्गदर्शन करते हैं।

और हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। और ये जो टीचर्स डे है मॉरिशस में, हम इसे धूमधाम से मनाते हैं। और बेशक शिक्षक डे के दिन हम इस पर चिंतन मनन करते हैं कि आज अगर इंसान किसी ऊंचे रुतबे पर है तो वो उसके अध्यापक के बदौलत है। आज बड़े बड़े डॉक्टर है हमारे समाज में, बड़े बड़े अध्यापक है, इंजीनियर है, पॉलिटिशियन है, कलाकार है। और अगर ये सब लोग इस समाज में आजकल काम कर रहे हैं तो इन लोगों का मार्गदर्शन उनके गुरु ने किया। गुरु को उस्ताद भी कहते हैं। सो कल का दिन जो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। कल मंडे 5th अक्टूबर को मॉरिशस में टीचर्स डे मना रहे हैं। सो ये अध्यापकों और स्टूडेंट्स के लिए छुट्टी का दिन होगा, ओनली फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। और उस दिन हम इस बात पर चिंतन मनन करेंगे कि यह जो प्रोफेशन है कितना नोबल है, बहुत ही अच्छा काम है बच्चों को शिक्षा देना। और आज अगर शिक्षा ना होती तो हम इस मुकाम पर नहीं पहुंचते। और मैं जहां पर हूं आज, मैं आपसे बात कर रहा हूं और कॉलेज में पढ़ाते भी है, सो ये सब मेरे गुरु के बदौलत है। पहले मेरे पहले गुरु तो हमारे माता पिता हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। फिर हमारे जो गुरुजन हैं जो स्कूल कॉलेज में हमें पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में, हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं और जीवन भर हम अपने गुरु को याद करेंगे। सो डोंट फॉरगेट, टुमारो इज़ अ स्पेशल डे। अपने गुरु को याद कीजिएगा, समय मिले तो अपने गुरु के यहाँ जाइएगा, कोई ना कोई छोटा सा तोहफा ज़रूर दीजिएगा और उन्हें धन्यवाद दीजिएगा कि गुरु जी आज आप के कारण मैं आज आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ज़रूर अपने गुरु को धन्यवाद करें। अगर आपको समय नहीं मिलते हैं गुरु के पास जाने के लिए तो एक SMS व्हाट्सएप के जरिए ज़रूर भेज सकते हैं और गुरु को धन्यवाद दीजिएगा। सो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स इन मॉरिशस एंड अराउंड द होल वर्ल्ड। हैप्पी टीचर्स डे।

0: RM3 Radio.
1: इस दुनिया में लोगों के अलग अलग विचार होते हैं और अलग अलग सोच भी होते हैं. एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट द आइडियाज ऑफ वन एंड ऑल. और अब हम जो बात करेंगे वो है समलैंगिकता के बारे में. कुछ लोग इसे नॉर्मल वे ऑफ लाइफ कहते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि एक प्रॉब्लम है. डिपेंड्स हैं कि लोग क्या सोचते हैं. और समलैंगिकता ऐसे यौन अभिविन्यास है जिसमें किसी व्यक्ति के मुख्यतः उसी लिंग के लोगों के प्रति रोमांटिक भावनात्मक या यौन आकर्षण महसूस होता है. जैसे पुरुष का पुरुष के प्रति आकर्षण या महिला का महिला के प्रति आकर्षण. ये दुनिया भर में बहुत से ऐसे देश में है. और यह लिंग पहचान जेंडर आइडेंटिटी में अलग चीज़ है. उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अपने जन्म के समय निर्धारित लिंग से अलग जेंडर आइडेंटिटी रख सकता है. यह अपने आप में उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन निर्धारित नहीं करता. और पूरी दुनिया के लिए कोई एक बिल्कुल सटीक संख्या उपलब्ध नहीं है. इसका कारण यह है कि अलग अलग देशों में सर्वेक्षण अलग तरीके से किए जाते हैं. और यह बोलना कि दुनिया में कितने समलैंगिक लोग हैं बताना मुश्किल है. कानूनी कारणों से अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन सार्वजनिक नहीं करते हैं. इसलिए किसी एक प्रतिशत को पूरी दुनिया पर लागू करना सही नहीं है. वैज्ञानिक शोध के अनुसार सेक्सुअल ओरिएंटेशन बहुत जटिल मानवीय विशेषता है. इसमें जैविक और विकासात्मक कारकों का योगदान हो सकता है. इसे केवल किसी के कारण जैसे पालन पोषण दोस्ती या किसी घटना में समझना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है. महत्वपूर्ण बात यह है कि समलैंगिकता कोई बीमारी या मानसिक विकार नहीं है. कुछ लोगों का ये मानना है. प्रमुख चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं इसे मानव सेक्सुअल ओरिएंटेशन की सामान्य विविधता के रूप में मानती है. क्या इसे इलाज या बदला जा सकता है? जी हाँ, जी नहीं, इसे बदला नहीं जा सकता. समलैंगिकता को ठीक करने की आवश्यकता नहीं होती. तथाकथित कन्वर्शन थेरेपी या सेक्सुअल ओरिएंटेशन बदलने के प्रयासों के प्रमुख स्वास्थ्य संगठनों ने वैज्ञानिक आधारहीन और संभावित रूप से नुकसानदायक माना है. क्या समलैंगिक लोग परिवार बना सकते हैं? हाँ, अलग अलग देशों के कानूनों के अनुसार समलैंगिक कपल्स है वो लोग जिस देश में लॉ परमिट करते हैं वहाँ वो लोग शादी कर सकते हैं, साथ में रहते हैं और बच्चों को गोद में लेते हैं. दे अडॉप्ट चिल्ड्रन. ऑलराइट. और कुछ मामलों में असिस्टेड रिप्रोडक्शन का उपयोग भी होता है, जैसे सरोगेसी या मेप ऑथर्स कहते हैं. इन अधिकारियों के देश में काफ़ी अंतर है. और दुनिया के कुछ देशों में LGBT लोगों को विवाह और अन्य कानून अधिकार प्राप्त है, जबकि कुछ देशों में सामाजिक या कानूनी प्रतिबंध अभी भी मौजूद है. इसलिए समलैंगिक लोगों के अनुभव उनके देश, परिवार, संस्कृति और सामाजिक वातावरण के अनुसार बहुत अलग हो सकते हैं. सो कुछ लोग समलैंगिक लोग को बुरी नज़र से देखते हैं. वो लोग कहते हैं कि ये लोग अभिशाप है समाज के लिए. तो कुछ लोग कहते हैं कि इन लोगों को भी जीने का हक है, क्योंकि ये लोग भी समाज में काम करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं समाज के प्रमोशन में. वह सभी के अपने अपने विचार होते हैं. अब जिस परिवार में कोई बच्चा है जो समलैंगिक है तो उस परिवार से पूछना चाहिए कि उन पर क्या बीतता है. सो समलैंगिकता जो है कुछ लोग सोचते हैं कि बुरी बात है, पर कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें भी जीने का हक है. सो इट डिपेंड्स है, ये लोगों के विचारों पर डिपेंड करता है कि समलैंगिकता को वो कैसे देखते हैं. पर याद रहे कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी समलैंगिक हैं और जी रहे हैं.

दोस्तों कहते हैं कि हनुमान जी को हम चिरंजीवी कहते हैं, यानी कि वो अमर है, चिरंजीव है। हाँ, ये बात सच है। हिंदू धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान हनुमान आज भी जीवित माने जाते हैं। उन्हें चिरंजीवी कहा जाता है, अर्थात ऐसे देव या पुरुष जिनका जीवन सामान्य मनुष्यों की तरह समाप्त नहीं हुआ और वो वर्तमान युग में भी विद्यमान है। और रामायण और उससे जुड़ी परंपराओं में हनुमान जी को भगवान राम के परम भक्त और सेवक के रूप में बताया गया है। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें ऐसा वरदान प्राप्त हुआ है कि वे लंबे समय तक पृथ्वी पर रहेंगे। आज भी लोग मानते हैं कि भारत में हनुमान जी जीवित हैं। जी, आप सही सुन रहे हैं, लोगों की मान्यता है कि वो आज भी हनुमान हैं। एक महत्वपूर्ण प्रसंग महाभारत के वन पर्व में आता है, वहाँ हनुमान की भेंट भीम से होती है। इस प्रसंग में हनुमान अपने लंबे जीवन और प्राप्त वरदान के बारे में बताते हैं। क्या इस कहते हैं कि वे आज भारत में कहीं दिखाई दे सकते हैं? जी हाँ, धार्मिक विश्वास के अनुसार बहुत से लोगों का दावा है कि उन्होंने हनुमान जी को देखा है। कई भक्त मानते हैं कि हनुमान जी पृथ्वी पर किसी रूप में उपस्थित हैं, और जहाँ श्रद्धा से रामकथा या राम नाम का स्मरण होता है वहाँ उनकी उपस्थिति होती है। कुछ परंपराएं उनका संबंध गंधमादन पर्वत से भी जोड़ती है, लेकिन यह आस्था और वैज्ञानिक प्रमाण में अंतर समझना जरूरी है। हनुमान जी के आज किसी विशेष स्थान पर शारीरिक रूप से जीवित होने का वैज्ञानिक रूप से सत्यापित प्रमाण तो उपलब्ध नहीं है, इसलिए हनुमान जी आज भी जीवित है यह कहना धार्मिक विश्वास के रूप में उचित है, पर वैज्ञानिक के विचार अलग है। भक्तों के लिए इसका क्या अर्थ है? भक्तों के लिए हनुमान जी का चिरंजीवी होना केवल लंबी आयु की कहानी नहीं है, उसकी छवि मुख्य भक्ति, साहस, शक्ति, विनम्रता, निस्वार्थ सेवा, धर्म के प्रति समर्पण भी है। और इसी कारण आज भी भारत में करोड़ों लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। संक्षेप में धार्मिक दृष्टि में कहा जाए तो आज भी हनुमान जी भारत में जीवित है और वो पृथ्वी पर है। वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ और लोग उनका कहना कुछ और है, पर जो लोग धार्मिक दृष्टि से देखते हैं वो मानते हैं कि हनुमान जी भारत में, और कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने हनुमान जी को देखा है। पर हनुमान जी बहुत वृद्ध हो गए हैं, उनका कहना है। अब ये बात कहाँ तक सच है ये बताना ज़रा मुश्किल है, हम तो कुछ नहीं कह सकते, पर दार्शनिक विचार से, फिलोसॉफिकल रूप से अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि हनुमान जी चिरंजीवी है, यानी कि वो जीवित थे, वो जीवित हैं और वो हमेशा जीवित रहेंगे।

लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड गर्ल्स, प्रिय श्रोताओं, इसी हनुमान चालीसा के साथ ही अद्भुत सनसनी खबरों का प्रोग्राम ऐसा भी होता है यहीं पर समाप्त होने जा रहा है। बहुत प्यार से आपने मैं सुना शाम के 3 बजे से अभी तक, थैंक यू वेरी मच। हमारे बाद 4 बजे होगा फ्लैश न्यूज, के बाद डॉक्टर पूनम से आप सुनेंगे फिल्मी गजल प्रोग्राम। हमारी आपकी मुलाकात होगी कल मंडे की रात को 5 अक्टूबर को रात के 9 से 11 बजे ऑन रेडियो मॉरिशस। रेडियो मनोरंजन प्रोग्राम होगा भोजपुरी तरका। सो लेट मी विश यू ऑल द टीचर्स इन मॉरिशस अराउंड द होल वर्ल्ड हैप्पी टीचर्स डे, शिक्षक दिवस बहुत बहुत अभिनंदन हो। इसी विचार के साथ इजाजत चाहते हैं, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। अजय प्रताप सिंह स्टाइल साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, नमस्ते।

0: सुनते समाचार आशिता जी के साथ नमस्कार।
1: नमस्कार संजय, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता कुछ ही सेकंड में एक कहानी तैयार कर सकती है, ऐसे में सवाल उठता है कि लेखक के लिए क्या बाकी रह जाता है, उसकी कल्पना, उसके अनुभव और उसकी संवेदनशीलता और शायद वह जुड़ाव पैदा करने की क्षमता जिसे कोई मशीन पूरी तरह दोहरा नहीं सकती। तुरदुस में आज आयोजित पुस्तक महोत्सव में लेखक, प्रकाशक और पाठक एक ऐसी चीज के इर्द गिर्द जुटे जो अभी भी पूरी तरह डिजिटल दुनिया के सामने कायम है, वह है किताब। अब बात करते हैं बच्चों की नज़र से सड़क सुरक्षा की। पैदल चलने वाले हों या यात्री, बच्चे सड़क पर सबसे संवेदनशील उपयोगकर्ताओं में शामिल हैं। मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और ट्रैफिक मैनेजमेंट और रोड सेफ्टी यूनिट जल्द ही एक ऐसा ऐप शुरू करने

0: जा रहा है, जिसका उद्देश्य कम उम्र से ही बच्चों में सड़क पर सुरक्षित व्यवहार की आदत विकसित करना है। फिलहाल देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में हर सप्ताह 50 मिनट बच्चों को सड़क सुरक्षा के बुनियादी नियमों की जानकारी दी जाती है। हमारी व्यस्त दिनचर्या में कुछ पल रुकना, कुछ नया बनाना और एक दूसरे के साथ समय बिताना हमेशा आसान नहीं होता। पीएफओ में आज रविवार को आयोजित कौन की चौथी कलात्मक मुलाकात ने प्रतिभागियों को ऐसे ही कुछ सुकून भरे पल दिए। ये दिन सिर्फ मिलकर कुछ बनाने का नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ने और साथ होने का अवसर भी बना। यहाँ हर कोई अपनी रचनात्मकता और अपने अंदाज के साथ पहुँचा। कई हाथ मिलकर कार्डबोर्ड से एक घर तैयार किए। कोई काटता है, कोई जोड़ता है, तो कोई दूसरों की मदद करता है। और इस पूरी गतिविधि के दौरान बातचीत और आपसी मेल जोल भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। रोज़ स्थित एम्सो में जानवरों के प्रति संवेदना और सम्मान को समर्पित एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज 4 अक्टूबर को मनाए जा रहे विश्व पशु दिवस के अवसर पर आशीर्वाद समारोह आयोजित किया गया। ये समारोह जानवरों के संरक्षक माने जाने वाले संत फ्रांसवा दासीज की स्मृति से भी जुड़ा है। समाचारों को आगे बढ़ाती हैं, हम आपको याद दिला देती हैं कि इस वर्ष की थीम है उनकी नज़र से दुनिया को देखिए, यानी सी द वर्ल्ड थ्रू देयर आइज। मॉरिशस के केंद्रीय बैंक ने बाजार में जाली नोटों के चलन को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खासतौर पर कागजी नोटों के जाली होने की सूचना मिली है। बैंक ऑफ मॉरिशस ने लोगों से नोट की असलियत जांचने के लिए सुरक्षा विशेषताओं पर ध्यान देने और किसी भी संदिग्ध नोट की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय पायलट कप्तान स्मित मचार को इसराइल के अगले स्वतंत्रता दिवस पर जश्न की मशाल जलाने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने फ्लाई दुबई के कप्तान से कॉकपिट के अंदर 30 सितंबर को हुई घटना के बारे में बात करने के बाद इन्विटेशन दिया है। नेतन्याहू ने स्मित मचार की हिम्मत और सूझबूझ की तारीफ की और कहा कि वे भारत और इसराइल के बहादुर लोगों के असली हीरो हैं और कप्तान स्मिथ पूरी दुनिया के हीरो बन गए हैं। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play and NBC.mu. You're listening to RM3 Radio Man.

0: 4:12 हो चुके हैं दोस्तों। नमस्ते आदाब, आप सभी कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है आप सब खुश होंगे अपने अपनी जगह पे। आज हम बात करेंगे, दिल भी कितना अजीब है ना, जिसे प्यार करता है उसी की फिक्र करता है, उसी का इंतज़ार करता है और कभी कभी उसी के लिए दर्द भी सहता है। आज की महफिल में बात होगी दिल की, प्यार की और उस हल्के से दर्द की जिसे शायद हम सभी ने कभी ना कभी ज़रूर महसूस किया है। मैं हूँ आपके साथ पूनम, आइए शुरू करते हैं फिल्मी गज़लें सिर्फ आलम 3 रेडियो मनोरंजन पर।
1: RM3 Radio.

0: बजकर 14 मिनट हुए हैं दोस्तों, हम सुन रहे हैं आपके लिए फिल्मी गज़लें प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम इतना अच्छा है ना, इसमें जब गज़लों की बात होती है, शायरी की बात होती है, शायरों की बात होती है, तो एहसास होता है लिखने वाले ने क्या क्या लिख दिया। चलिए जी, बहुत ही एक खूब शायर हुए, उनका नाम है शकील आज़मी। और फिल्मी गीतों के साथ तो उनका जुड़ाव है ही है, बॉलीवुड में भी बहुत कुछ लिखा उन्होंने, पर जितना लिखा उसमें उनका रंग जो था मोहब्बत के और रिश्तों के लिए बहुत कुछ लिखा। लिखते हैं, दिल ने चाहा था उसे अपना बनाए रखें, दिल ने चाहा था उसे अपना बनाए रखें, उसकी हर बात को सीने से लगाए रखें, वो किसी और की राह पर चल भी दिया तो क्या, वो किसी और की राह पर चल भी दिया तो क्या, हमने चाहा उसकी यादों को सजाए रखें। दिल का कौन सा कोना होता है दोस्तों, पता नहीं, पर कहते हैं ना कि जब छोटी छोटी बातें रह जाती हैं ज़िंदगी में, इंसान चला भी जाता है, पर कहीं ना कहीं उसकी बातें, उसकी यादें कहीं ना कहीं दिल में रह जाती हैं। और वही कभी कभी शायरी जब लिखी जाती है तो बस कागज़ पर आ जाती है और कलम उसे पहचान लेती है, इसी को तो कहते हैं शायरी।
1: RM3 Radio.

0: के साथ। अब हम बात करते हैं एक ऐसी शायरा की जिनका नाम है मीनू बख्शी। मीनू बख्शी जब लिखती हैं तो उनके लिखने में प्रेम ज़्यादा दिखता है, एहसास ज़्यादा दिखते हैं और नरमी ज़्यादा दिखती है। लिखती हैं, मुझे तोहफ़ों की कभी चाहत नहीं थी, मुझे तोहफ़ों की कभी चाहत नहीं थी, तेरी फ़िक्र से बड़ी कोई दौलत नहीं थी, तो बस पूछ लेता आज तुम कैसे हो, मेरे लिए इससे खूबसूरत मोहब्बत नहीं थी। वाह, प्यार भी ऐसे ही होता है, बहुत छोटा सा और सिंपल सा होता है। इतना ही कोई पूछ लेता है, घर पहुंच गए, खाना खाया, तबीयत ठीक है ना, अपना ख्याल रखना, ये छोटे छोटे से सवाल और कितनी बड़ी परवाह एहसास देती है। और यही परवाह जो होती है, यही तो जिंदगी होती है।
1: RM3 Radio.

0: बजकर 33 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम फिल्मी गजलों के साथ। और इस समय मैं आपका साथ दे रही हूँ पूनम। एक बहुत बड़े शायर हुए हैं, उनका नाम है मंसूर उस्मानी। लिखते हैं, हम मिले भी तो कहानी पूरी ना हुई, हम मिले भी तो कहानी पूरी ना हुई, दिल की कोई बात जुबानी ना हुई, वो समझते रहे हम भूल गए उनको, वो समझते रहे हम भूल गए उनको, और हमसे उनकी याद पुरानी ना हुई। कहते हैं ना कि अगर एक मुशायरों में जुड़ा हुआ एक इंसान जो कि इतनी शायरी लिखता हो, इतना कुछ लिखता हो, मोहब्बत के लिए लिखता हो, जज्बातों और ज़िंदगी के लिए लिखता हो, और वो इतनी छोटी सी बात कह दे और बहुत ऐसी एहसास वाली बात कह दे कि हाँ, ज़िंदगी के अंदर ये जो उतार चढ़ाव होते हैं वो कभी पुराने नहीं हुआ करते। तो कुछ कहानियों की एंडिंग नहीं होती, ना रिश्ता पूरी तरह रहता है, ना याद पूरी तरह जाती है, बस जिंदगी आगे बढ़ती रहती है और कहानी दिल में कहीं ना कहीं रह जाती है।
1: RM3 Radio.

4:41 हो चुके हैं दोस्तों, और ये बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है सिर्फ इसीलिए क्योंकि इधर बात होती है शायरी की, शायरों की, और हम करते हैं वो बातें जो बहुत टाइम तक कई बार हम सोचते नहीं और अपने आप में अपने आप से जुड़ नहीं पाते। तो हम तो यही कहते हैं कि शायरी हमेशा दिल को जोड़ती है, सांसों को जोड़ती है, और कहते हैं ना जज्बातों को जोड़ती है। तो हम तो आपके लिए लेकर आते हैं बहुत अनोखे अनोखी शायरियाँ। ये एक

0: और हमारी ऐसी एक शायरिया शायर हैं और बहुत ही खूबसूरती से लिखते हैं, हर शाम तेरी राह नहीं देखती मैं, हर शाम तेरी राह नहीं देखती मैं, हर बात में तेरा नाम नहीं लेती मैं, तुम समझते हो शायद भूल गई हूँ मैं तुम्हें, बस अब अपना इजहार दिखाती नहीं मैं। ये लाइन दिल को छू जाती है क्योंकि वक्त के साथ साथ इंतज़ार ख़त्म हो ये ज़रूरी नहीं। कभी कभी हम बस उसे दिखाना बंद कर देते हैं और एहसास दिलाते हैं उस इंसान को कि देख, मुझे तेरी परवाह तो है और बहुत परवाह है, बस दिखाना नहीं चाहती। और यही उम्मीद करते हैं कि अगर आपको भी किसी से बहुत मोहब्बत है और आप बार बार उनके करीब जाना चाहते हैं और वो आपके करीब नहीं आना चाह रहे, या आपको कोई मैसेज नहीं कर रहे या कोई बात नहीं, तो दिल के अंदर रखें उस अरमानों को, कभी ना कभी वो अरमान उनके सामने ज़रूर निकलेंगे।
1: RM3 Radio.

0: 4:50 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं फिल्मी गज़लों के साथ और मैं साथ दे रही हूँ आपका पूनम। और मुझे पूरी उम्मीद है ये जो गज़लें हैं आपके दिल के करीब पहुँच रही होंगी। तो दोस्तों बस आज तो हम इतना ही कहेंगे, आज दिल ने जो प्यार भी महसूस किया, थोड़ा इंतज़ार भी, कुछ पुरानी यादें भी आई होंगी आपके दिल में और कहीं थोड़ा सा दर्द ने भी दस्तक दिया होगा। शायद इसलिए कहते हैं कि गज़लें हम इतनी अपनी सी लगती हैं क्योंकि कई बार ये बस सीधा दिल के अंदर दस्तक देती हैं और हम लोग दरवाज़ा खोल देते हैं, क्योंकि जो ये शेर होते हैं ये एहसास दिलाते हैं उस लम्हा का जब किसी शायर ने उसको लिखा होता है, उसके एहसास जब उस समय होते हैं और वो जब लिख देते हैं और वो लिखते हुए चलते हुए बढ़ते हुए हम तक पहुँच जाते हैं। तो हम तो यही कहेंगे, इन एहसासों का ख्याल रखिए, अपने जज्बातों का ख्याल रखिए। मैं थी आपके साथ पूनम, मुझसे पहले थे आपके साथ प्रताप जी, जिन्होंने बहुत ही प्रोग्राम प्यारा सा करते हैं जो मेरा बहुत ही पसंदीदा है। और मेरे बाद मिलेगा आपको साथ शीतल जी का, उनका भी साथ दीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी समय। और तब तक ये बहुत ही प्यारी मिताली सिंह की आवाज़ में गज़ल आने वाली है आप सबके लिए। मेरी तरफ से नमस्कार।
1: RM3 Radio.

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: Center 94 North South 95.6 East West 98.2. You are listening to RM3 Radio.
2: टाइम चेक, शाम के 5 बज रहे हैं।
3: साया जो हर पल हमारे साथ रहता है, एक ऐसा समय भी आता है कि वो साया साथ छोड़ जाती है, पर जो हमेशा दामन पकड़े रहती है वो है यादें।
4: सर्कस की दुनिया से होते हुए कभी बंद कमरे में तो कभी सागर किनारे प्यार के फलसफे सिखा गए। शायरी करते करते कभी खेल खेल में खुल्लम खुल्ला इस प्यार का इजहार भी करते गए। दीवानगी के इस खूबसूरत आलम में अपने आप को कुछ इस तरह से स्थापित किया कि कह गए हम किसी से कम नहीं, जो कि बन गए थे अपने दौर के एक ट्रेंडसेटर। बात चल रही है द ग्रेट ऋषि कपूर की।

4 सितंबर 1952 को ऋषि कपूर का जन्म हुआ और महज 67 साल के थे 30 अप्रैल 2020 को इस दुनिया से दूर हो गए, इस दुनिया से विदा ले गए। ऋषि कपूर एक ऐसे कलाकार रहे जो कि बचपन से ही हिंदी सिनेमा से जुड़े रहे। कुछ 5 दशकों से ज्यादा ऋषि कपूर इस हिंदी सिनेमा पर राज करते रहे, हिंदी सिनेमा को अपना बहुत बड़ा योगदान दिया।

90 से भी ज्यादा फिल्मों में उन्होंने बतौर लीड एक्टर काम किया। 70-80 रहा ऋषि कपूर का दौर, जहां उन्होंने अपने आप को बड़ी खूबसूरती से स्थापित कर गए। ऋषि कपूर के बारे में बात करें तो वे एक कमाल के एक्टर तो थे ही, लेकिन साथ में वो एक विजनरी कलाकार भी थे। हर एक जनरेशन के साथ अपने आप को अपने किरदार के जरिए हर जनरेशन से मिल जाते थे, और कुछ इस तरह ऋषि कपूर अपने दौर के बन गए अ ट्रेंडसेटर। उनकी पॉपुलैरिटी उनके पहनावे से हर कोई प्रभावित हुआ, जो कि वे अपने स्वेटर हमेशा अपने कंधे पे रखते थे, वहीं से उन्हें नाम दिया गया द स्वेटर मैन। एक बेहद ही कैरिस्मेटिक एक्टर रहे।

ऋषि कपूर में खूबी ये रही कि वे हर एक कैरेक्टर को बड़ी आसानी और सफलता के साथ निभा जाते थे। कट क्लासिक मूवी 1982 की फिल्म प्रेम रोग में ऋषि कपूर ने प्यार मोहब्बत के फलसफे को एक बार फिर रिडिफाइन किया। फ्रेश टीनेज लव स्टोरी, मैं हूं प्रेम रोगी, संतोष आनंद के खूबसूरत अल्फाज सुरेश वादकर ने प्लेबैक किया ऋषि कपूर के लिए। इस गाने को बहुत खूबसूरत म्यूजिक कंपोजिशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया।

फिल्म प्रेम रोग एक ऐसी फिल्म रही जहां मोहब्बत के हर एक पड़ाव को बड़ी खासियत से पेश किया गया। इस कैरेक्टर को ऋषि कपूर ने बड़ी खूबसूरती से बड़े पर्दे पर पेश किया। इस प्रेम रोगी के जिंदगी में मोहब्बत बन गया एक रोग, जहां दर्द के साथ साथ तन्हाई रुसवाई भी मौजूद रही। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, लेकिन कहीं न कहीं दिल के किसी एक कोने में उम्मीद की एक किरण थी। ऋषि कपूर ने इस कैरेक्टर को कुछ इस तरह से पेश किया जिसके लिए आज भी उन्हें वाहवाही दिया जाता है।

1985, the comeback of the greatest evergreen real couple, Rishi Kapoor or Dimple Kapadia. 12 saal baad, reunited by the great director Ramesh Sippe sahab. Superhit film Sagar. Is khoobsurat jodi ne bade parde par dhamaka macha diya. कि ऋषि कपूर की तरह कोई और एक्टर हो ही नहीं सकता. म्यूजिकल रोमांटिक मूवी सागर, चेहरा है या किशोर कुमार ने ऋषि कपूर के लिए इस गाने में प्लेबैक दिया. आरडी बर्मन ने म्यूजिक कंपोजिशन को बड़ी खासियत से पेश किया.

80 का दौर एक ऐसा दौर रहा जहां ऋषि कपूर ने अपने आप को पूरी तरह से हिंदी सिनेमा पर स्थापित कर दिया था। फिल्म सागर में ऋषि कपूर ने इस बात को पूरी तरह से साबित कर दिया। सागर किनारे, द टाइटल सॉन्ग ऑफ फिल्म सागर, एन आइकॉनिक सॉन्ग रिटन बाय जावेद अख्तर साहब और प्लेबैक किशोर कुमार ने दिया ऋषि।

एक ऐसा दौर भी आया 80 के दौर में जहां ऋषि कपूर के फिल्में कुछ खास चल नहीं रही थी, लेकिन ऋषि कपूर ने हार मानी नहीं, संघर्ष जारी रखे। कुछ 4 साल बाद एक नए कमबैक के साथ ऋषि कपूर ने अपने आप को एक बार फिर यश चोपड़ा के ब्लॉकबस्टर रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म चांदनी। लता जी और बबला मेहता ने ऋषि कपूर और श्रीदेवी के लिए प्लेबैक दिया।

फिल्म चांदनी एक ऐसी फिल्म रही जो कि एक हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म रही, लेकिन इस फिल्म में ऋषि कपूर ने अनेकों कैरेक्टर निभाए जिसके लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है। ऋषि कपूर की फिल्मों में चांदनी वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवीज मानी जाती है और उनके किरदार भी काबिले तारीफ रही।

हिंदी सिनेमा में अनगिनत रोल ऋषि कपूर ने निभाए, अनगिनत फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन एक ऐसी फिल्म रही जिसका नाम सुनते ही ऋषि कपूर का चेहरा नजरों के सामने आ जाता है, और वो रहा ये वादा रहा। कहानी के साथ साथ इस फिल्म के सभी गाने बेहद ही मशहूर हुए। ऋषि कपूर के साथ इस फिल्म में मौजूद रही टीना मुनिम और पूनम थिलन। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिट ऑफ ऋषि कपूर, ये वादा रहा।

0: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाते चलिए, शाम के ठीक 6 बजे हैं। रविवार 4 अक्टूबर 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। पौना चौल के आसपास चलाई जा रही खोज कार्रवाई 7वें दिन पर पहुंच गई है। एनसीजी की टीमें उस 26 साल के भारतीय नागरिक को खोजने में लगी हुई है जो पिछले रविवार को देश के दक्षिण में स्थित पौना चौल में एक चट्टान से गिर गया था। शुक्रवार 2 अक्टूबर को लंदन में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम और बरतानी राष्ट्रीय सलाहकार जोनाथन पावल के बीच शागुस मुद्दे पर हुई बैठक आज कई अखबारों की सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री के एक बयान का हवाला देते हुए एक्सप्रेस दिमाश और वीकेंड ने अपने लेखों में कहा है कि अगर उचित समय सीमा के अंदर शागुस संधि को मंजूरी नहीं दी गई तो मॉरिशस कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपना सकता है। तवांग के लामीवा इलाके के रहने वाले लोग अपने आसपास पैडल और टेनिस कोर्ट 24 विला और 45 हाउसिंग यूनिट्स जैसी परियोजनाओं के कारण चिंता जता रही हैं। उन्हें खास तौर पर संभावित परेशानियां और बाढ़ की समस्या के बिगड़ने की चिंताएं हैं जिनका सामना वे पिछले कई सालों से कर रहे हैं। स्पेन के कतालोनिया प्रांत में भारी बारिश के चलते भयानक बाढ़ उतर आई है। कई नदियां उफान पर हैं, 2 लोगों के मारे जाने की खबर है और कई अन्य लापता बताए जा रहे हैं। पौना चौल के आसपास चलाई जा रही खोज कार्रवाई 7वें दिन पर पहुंच गई है। एनसीजी यानी नेशनल कोस्ट गार्ड की टीमें उस 26 साल के भारतीय नागरिक को खोजने में लगी हुई है जो पिछले रविवार को देश के दक्षिण में स्थित पौना चौल में एक चट्टान से गिर गया था। लुशालों की एक टीम आसपास के लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने और पर्यटकों को खाई के बहित खरी के करीब जाने से रोकने के लिए तैनात हैं।

0: शुक्रवार 2 अक्टूबर को लंदन में प्रधानमंत्री डॉ नवीन आराम गुलाम और बरतानी राष्ट्रीय सलाहकार जोनाथन पावल के बीच शगुस मुद्दे पर हुई बैठक आज कई अखबारों की सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री के एक बयान का हवाला देते हुए एलेक्स पश्चिमांश और वीकेंड ने अपने लेखों में कहा है कि अगर उचित समय सीमा के अंदर शगुस संधि को मंजूरी नहीं दी गई तो मॉरिशस कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपना सकता है। के लामीवा इलाके के रहने वाले लोग अपने आसपास चल रहे रियल एस्टेट और मूल ढांचा परियोजनाओं को लेकर चिंता जता रहे हैं। पैडल और टेनिस कोर्ट, 24 विला और 45 हाउसिंग यूनिट्स जैसी परियोजनाओं के कारण लोगों की आशंकाएं बढ़ रही हैं। उन्हें खास तौर पर संभावित परेशानियां बाढ़ की समस्या के बिगड़ने की चिंताएं हैं, जिनका सामना वे पिछले कई सालों से कर रहे हैं। देश में जल भंडार की स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश का कोई अनुमान नहीं है। अगर ये सही साबित हुआ तो पानी के वितरण में भारी बाधा पैदा होंगी। इस सिलसिले में इस हफ्ते एक क्राइसिस कमेटी की बैठक लगेगी। CWA के महानिदेशक शांतानु कल रात MBC के फ्रेंच बुलेटिन में मौजूद हुए थे। उन्होंने आपातकालीन योजना का ऐलान किया जिसमें जलापूर्ति सारिणी में बदलाव शामिल हैं। उनको सुनते हैं।
1: श्याम तानू ने कहा, एक आपातकालीन योजना है, अभी संबंधित प्रतिबंध योजना पर कार्य कर रही है। इस बात को रेखांकित करना चाहेंगे कि संकट स्थिति का सामना कर रही है। सरकार की ओर से एक समिति का गठन हुआ है जिसकी अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री कर रही है। अगले हफ्ते क्राइसिस कमेटी की बैठक लगेगी, संबंधित कदम उठाए जाएंगे जैसे कि गंभीर प्रतिबंध, और लोगों से मांग की जाती है कि पानी जाया न करें, समझदारी दिखाएं। अगस्त महीने की शुरुआत में कुछ नियम लागू किए गए और लोगों से पानी बचाने की भी मांग की जा रही है। इस विधेयक में जुर्माना भरने का भी प्रावधान है। लोगों के लिए सलाह है कि बहुत सावधान रहें, पानी की बचत करें, सुनिश्चित करें कि किसी प्रकार का जल भंडारण हो घर पर ताकि दैनिक इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त पानी रहे। ये प्रश्न पूछे जाने पर कि अगर नवंबर दिसंबर महीने तक भी वर्षा न हो तो ऐसे में स्थिति का सामना कैसे किया जाए, इसके जवाब में श्यामतानू ने कहा कि माहो वाकवा में अभी स्थिति बहुत गंभीर है। दो नदियां हैं, पितरें और पापाएं। सीधा लामागी से वाटर फिल्टर स्टेशन से पानी पंप किया जाएगा। सामान्य स्थिति में माहो वाकवा को लामागी को करीब 1,10,000 क्यूबिक मीटर पानी पहुंचाता है। शुक्रवार तक लगभग 71,000 और शनिवार को 69,000 क्यूबिक मीटर पानी था। स्थिति काफी चिंताजनक है, ऐसे में प्रतिबंध लागू करने ही है। ये भी सुनिश्चित करेंगे कि समय सारणी निर्धारित हो, जनता को सूचित किया जाएगा ताकि लोग नकारात्मक तरीके से प्रभावित न हो।
0: जैसे है कि हम आपको कुछ देर पहले बता रहे थे कि तमाहे के लामीवा इलाके के रहने वाले लोग अपने आसपास चल रही रियल एस्टेट और मूल ढांचा परियोजनाओं को लेकर चिंता जता रहे हैं। पैडल और टेनिस कोर्ट, 24 विला और 45 हाउसिंग यूनिट जैसी परियोजनाओं के कारण लोगों की आशंकाएं बढ़ रही हैं। उन्हें खास तौर पर संभावित परेशानियां और बाढ़ की समस्या से स्थिति बिगड़ने की चिंताएं हैं, जिनका सामना वे पिछले कई सालों से कर रहे हैं। अंजू राम गुलाम की रिपोर्ट पर याचना मिश्रा का विवरण।
2: तमाहे में मुसलमान रामदेनी के लामीवा में बाशिंदे परेशान हैं। उनकी नाक के नीचे कानों को तकलीफ देने वाली और शांति भंग करने वाले टेनिस और पैडल कोर्ट्स बनाए जाएंगे। पैडल के लिए 80 से 100 डेसिबल की सीमा निर्धारित है, जबकि आवासीय इलाकों में ये सीमा सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक 60 डेसिबल है। जो इलाका अब तक हरियाली से घिरा था, वहां बारिश के बाद उगने वाले मशरूम की तरह तेजी से रियल एस्टेट परियोजनाएं सामने आ गई हैं, और अभी और बाकी हैं। यहां 24 विलास बनाए जाने वाले हैं।
3: On demande nous à ce qu'on nous écoute, à ce qu'on nous aide et à ce qu'on comprenne ce qui se passe.
2: यही नहीं, एक अन्य प्रमोटर ने 45 आवासीय इकाइयों वाले एक प्रोजेक्ट के लिए आवेदन दिया है। इनमें ग्राउंड फ्लोर, दो मंजिलें, तीसरे स्तर पर पेंट हाउस होंगे, नदी से कुछ ही कदमों की दूरी पर। निवासियों ने कई निर्वाचितों से संपर्क कर अपनी चिंता व्यक्त की। सांसद जुआना बेहोंजे ने उनके स्थल पर आने की मांग की। ये एक आवासीय इलाका है, पर्यावरण आदि को ध्यान में नहीं रखा गया है। आने जाने की एक ही सड़क है, पानी की कमी, सुरक्षा की कमी। जो लोग ये अपार्टमेंट खरीदेंगे वे नहीं जानते कि ये बाढ़ संभावित इलाका है। पर्यावरण मंत्रालय की ओर से जारी औपचारिक ब्रीफ के अनुसार इस स्तर पर तीन स्थलों में कोई वेटलैंड शामिल नहीं। हालांकि लॉट 22 पर प्रस्तावित 45 आवासीय इकाइयों वाली परियोजना के मामले में अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। परमिट पर अभी विचार किया जा रहा है और मंत्रालय एक प्रारंभिक पर्यावरणीय अध्ययन की मांग करने की योजना बना रहा है। वेटलैंड हो या न हो, इस रियल एस्टेट परियोजना से लामीवा के निवासी बाढ़ की समस्या का सामना कर रहे हैं। सबूत के तौर पर उन्होंने वीडियोस भी साझा किए। उनके अनुसार पिछले 15 सालों से अधिक समय तक ऐसी स्थिति कभी सामने नहीं आई थी।
4: पीबीएमसी
2: समिति काम करके सलाह देती है। वे एप्लीकेशन पर काम करके देखते हैं कि सभी मापदंडों का पालन हो रहा है या नहीं। अलग अलग मापदंड हैं, जैसे पर्यावरण, स्वास्थ्य आदि के लिए क्लियरेंस, सीईबी,
4: सीडब्ल्यूएबीआ।
2: लामीवा के निवासी अभी भी अपनी आवाज़ उठाने का प्रयास जारी रखेंगे, अपने इस छोटे से हरे भरे इलाके को बचाने के लिए, जहां कंक्रीट का फीका रंग धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रहा है।
0: और जैसे कि आपको बताया गया था कि पोनाचखल के आसपास चलाई जा रही खोज कार्रवाई सातवें दिन पर पहुंच गई है। एनसीजी की टीमें उस 26 साल के भारतीय नागरिक को खोजने में लगी हुई हैं, जो पिछले रविवार को देश के दक्षिण में स्थित पोनाचखल में एक चट्टान से गिर गया था। लुशालों की एक टीम आसपास के लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने और पर्यटकों को खाई के करीब जाने से रोकने के लिए तैनात है। कुणाल गुजी की रिपोर्ट।
5: मॉरिशस में रहते हैं, पहली बार इधर आए हैं
6: जी। पहली बार
5: मैं आपको बता दूं, अब जहाँ आप जहाँ जा रहे थे उधर बहुत खतरा है। इधर आप जैसे देख रहे हो, यहाँ एक ब्रिज है, देखने के लिए बहुत अच्छा है, बट यहाँ बहुत लोग अपने जान गंवा दिया है। ऐसे मैं बोलूँगी आप इधर ही से देखना, उधर मत जाना। जैसे आप देख सकते हो वहाँ पर भी बहुत सारे वेव्स आ रहे हैं। ऐसा सेल्फी ले रहे हो तो कभी एक वेव आकर पीछे से आपको ले सकता है, और यहाँ से भी बहुत चांस होता है आपको फिर ऊपर लाने के लिए, देख सकते हैं। तो मैं आपको बोलूँगी उधर जाना ही नहीं, जो फ़ोटो लेना है इधर ही से लेना।
6: थैंक यू।
5: एंड आप जाओगे अपने फ्रेंड्स लोग को भी बोल देना जो यहाँ आना चाहते हैं, ताकि हम जितने चाहे आप लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं कि पोनाचखल इज़ वेरी नाइस टू सी, बट यहाँ बहुत खतरा है। यहाँ आना है तो बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ता है।
6: ओके मैम,
5: थैंक यू। इधर से आप फोटो लो।
6: ओके, थैंक यू।
7: ओके, मेरा एक दोस्त आया था इधर, वो ही जाके बताया वो जगह बहुत अच्छा है, इसलिए हम लोग आए इधर घूमने। हाँ, यहाँ पे बहुत सावधानी लेना चाहिए, नहीं तो आपको जान को भी खतरा हो सकता है।
8: हमारे दोस्त भी पहले आए थे, वो भी लोग बोले थे आप जाइए वहाँ पे घूम के आइए, बहुत अच्छा जगह। हम लोग आए, हमको यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा जगह है सेल्फी लेने के या फोटो लेने के लिए या घूमने के लिए, ये बहुत अच्छा जगह है। ये चीज़ को हमको ध्यान में रख के हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, जो डेंजर एरिया है उधर हम लोग नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए गार्ड भी हैं, हम लोग को मना कर रहे हैं इधर नहीं जाना है, वहाँ पे हम लोग उस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं।
0: सरकार अपने इकोलॉजिकल ट्रांजिशन रोडमैप की रफ्तार बढ़ाना चाहती है। स्थानीय बायोमास उत्पादन की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए पिछले 24 सितंबर को कृषि उद्योग मंत्री डॉ. अरविंद बुलेल की अध्यक्षता में एक राउंड टेबल चर्चा लगी। मॉरिशस के इंडस्ट्री अथॉरिटी की पहल पर आयोजित इस बैठक में इस सेक्टर से जुड़े साझेदार एक स्पष्ट मकसद के साथ एकत्र हुए। 2035 तक राष्ट्रीय ऊर्जा मिश्रण में रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी 60% तक पहुंचाना है। इस लक्ष्य के केंद्र में खेती से जुड़े नए तरीके, वन विभाग और आर्थिक आर्बिट्रेशन जैसे पहलू शामिल हैं। माधवी चागौनाथ, रजनी विकर।
1: हमारे स्थानीय बायोमास के इस्तेमाल के लिए ठोस समाधान ढूंढना मॉरिशस के

0: रेस्ट्री अथॉरिटी एमसीआई की ओर से पहल की गई है और इसके लिए यही अहम मुद्दा, गन्ना प्राधिकरण की तरफ से ईख के एक गन्ने की एक नई किस्म प्रस्तावित की जा रही है ताकि देश के ऊर्जा ट्रांजिशन में ये सहायक सिद्ध हो। मॉरिशस केन इंडस्ट्री अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर सुमन सिरतन ने कहा, बहुत से ईख के खेत त्याग दिए गए थे। 4 वर्षों की एक बड़ी परियोजना है जिसके तहत 1500 हेक्टर त्यागी हुई जमीन पर फिर से खेती की जाएगी। ऐसा करते हुए मौका से फायदा उठाते हुए क्लासिकल वैरायटी की तुलना में अधिक फाइबर वाले किस्म पर ध्यान केंद्रित करेंगे। गन्ने के संबंध में गन्ने के पत्तों को भी जमा करने की बात शामिल है। कुल 500 गीगावाट से 2030 प्रति घंटे तक का लक्ष्य निर्धारित है। लेकिन इस ट्रांजिशन में केवल गन्ना ही नहीं है, एक अन्य अहम मुद्दा भी है, वो है हमारे जंगल। कृषि उद्योग मंत्रालय के फॉरेस्ट कंजर्वेटर पूजन राज खरन ने कहा, उद्देश्य है अनुकूल पेड़ों के साथ फिर से जंगल को व्यवस्थित करना ताकि रिन्यूएबल एनर्जी की योजना पूरा कर सके। प्रतिवर्ष 100 टन लकड़ी है। अभी इन दिनों सरकार ईख के पत्तों और बायोमास के लिए 3.50 रुपए किलोवाट प्रति घंटे के हिसाब से पैसे चुका रही है। बिजली के स्वतंत्र उत्पादक इस टैरिफ के बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। बिजली के इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर के प्रवक्ता ग्रेगोरी बाथफील्ड ने कहा, इससे आयात की जाने वाली ऊर्जा पर कम निर्भर होंगे जो कि मुद्रा के हिसाब से ज्यादा महंगा है। अभी दाम पर गौर करने की दिशा में काम कर रही है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए ये जरूरी है। स्थल की हकीकतों के चलते कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेट व्यावहारिक होना चाहते हैं। स्थानीय उत्पादन काफी नहीं होगा। 9 वर्षों में 60% मिक्सड एनर्जी तक पहुंच पाने के वास्ते बायोमास आयात से नहीं बचा जा सकेगा। उन्होंने कहा,
1: बागास इन एन रोल बियन अपोर्टर अवेक लेज बायोमास,
0: अन्य बायोमास की तरह बागास की एक अहम भूमिका है। एमसीआई का एक शेड है जिसे परिवर्तित किया जाएगा। सख्त सैनिटरी नियम है, एक तरफ ईख के गन्ने होंगे तो दूसरी तरफ बायोमास, और कोई विकल्प नहीं। धीरे धीरे बायोमास बढ़ाएंगे तो आयात कम करेंगे। इस ट्रांजिशन से स्पष्ट संकेत, रेजवी में बायोमास के लिए समर्पित एक प्रयोगशाला का उद्घाटन जहाँ पर इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थों का विश्लेषण किया जाएगा। जहाँ तक वार्ता की बात है तो बहुत जल्द सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी ताकि स्थानीय शाखा की आर्थिक एवं लॉजिस्टिक आर्बिट्रेशन निर्धारित हो जो कि मॉरिशस के लिए ऊर्जा संबंधी रोडमैप के लिए अहम है।
2: कई हफ्तों की बातचीत के बाद सेंट्रिक्स के 300 से अधिक कर्मचारियों और कंपनी के प्रबंधन के लिए एक स्वीकार्य समझौता आखिरकार तय हो गया है। कॉन्सेंट्रिक्स के बंद होने से मॉरिशस में बीपीओ सेक्टर के भविष्य पर एक बार फिर चर्चा हो गई है। एक अंतर मंत्री स्तरीय समिति वर्तमान में नई चुनौतियों का सामना कर रही इस सेक्टर के पुनर्गठन पर काम कर रही है। यासीन दिल मोहम्मद की रिपोर्ट पर पूजा सुकालू का विवरण।
3: अस्थिरता में जीना ज्यादा मुश्किल होता है। कई हफ्तों तक श्रमिक संघ, कंपनी के प्रशासन और श्रम मंत्रालय के समझौतों के बीच कॉन्सेंट्रिक्स के कर्मचारी बिना जवाब ही रह गए। आखिरकार शुक्रवार को ग्रुप के शेयर होल्डरों की बदौलत उम्मीद की किरण नजर आई। दो महीनों का समझौता तय हुआ है। वेतन, सालांत का बोनस, कैजुअल लीव, वैकेशन आदि की भरपाई अलग से की जाएगी। मंत्रालय ने इस फैसले की सराहना की। श्रम मंत्री बताते हैं, कॉन्सेंट्रिक्स के पास कर्मचारियों के वेतन के लिए पैसे ही नहीं थे। शेयर होल्डर कर्मचारियों की कड़ी मेहनत को ध्यान में रखकर पैसे चुकाने को राजी हुए हैं। कॉन्सेंट्रिक्स से परे पूरा बीपीओ क्षेत्र कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और वेतन को लेकर बढ़ी हुई उम्मीदों के कारण एक अंतर मंत्रालय समिति सुधारों पर विचार कर रही है।
4: Parce que nous encore, il y a beaucoup à offrir en termes de qualité du service qui va nous ressentir, le fait qu'ils nous
3: bilinguent. रणनीतियों पर फिर से विचार किया जाना होगा. बहुभाषी होने के नाते हम

0: विदेशी कंपनियों को सहयोग दे सकते हैं। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव्स के साथ आगे आना पड़ेगा। समिति का काम शुरू हो चुका है, रिपोर्ट कैबिनेट को सुपुर्द की जाएगी।
1: ओम्बज पर्सन फॉर चिल्ड्रन दफ्तर ने शुक्रवार को कोरा आर्ट सेंटर में अपनी 2025-2026 रिपोर्ट प्रस्तुत की। लगभग 200 पृष्ठों की इस रिपोर्ट में कई अध्याय शामिल हैं, जो मुख्य रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों के अधिकारों, गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं वाले बच्चों, ऑटिज्म और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों तथा अन्य विषयों को समर्पित हैं। याद रहे कि जुलाई 2025 और जुलाई 2026 के बीच ओम्बज पर्सन दफ्तर ने 363 मामले दर्ज किए, जिनमें से 6 रोड्रिग्स के थे। इनमें 167 मामले स्कूल से जुड़ी समस्याओं के रहे, जिनमें बुलिंग शामिल रहा। 63 मामले पारिवारिक समस्याओं से जुड़े थे और 11 मामले दिव्यांग बच्चों से संबंधित रहे। ओम्बज पर्सन फॉर चिल्ड्रन ने अपनी 2025-2026 रिपोर्ट में मॉरिशस में ऑटिज्म बच्चों की स्थिति पर एक अध्याय शामिल किया है। दफ्तर में दर्ज की जाने वाली शिकायतों की संख्या से पता चलता है कि ऑटिस्टिक बच्चों के लिए अच्छे किस्म की और समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सिंचामुत्यू यचना मिश्रा।
2: मॉरिशस में ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों की देखभाल और शिक्षा व्यवस्था में मौजूद कमियों की पहचान करने तथा उनके अधिकारों और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अधिक समावेशी शिक्षण के लिए ओम्बज पर्सन फॉर चिल्ड्रन ने संबंधित साझेदारों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया। प्रमुख बाधाओं पर विशेष रूप से चर्चाएं की गयी। कई बच्चे समस्याओं से जूझ रहे हैं, माता पिता परेशान हैं, हमने सिफारिशें की हैं। कानूनी स्तर पर ऐसे बच्चों की देखरेख के लिए कई कमियां पाई जाती हैं, खासकर 3 से 5 साल की उम्र के बच्चों के लिए। प्रमुख मुद्दों में ऑटिज्म के बारे में सीमित जानकारी, जो भेदभाव को बढ़ावा देती है, शामिल हैं। इसके अलावा कई कक्षाएं बच्चों की जरूरतों के अनुरूप नहीं और आवश्यक संसाधनों तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों की भी कमी है। दिव्यांग बच्चों या ऑटिज्म जैसी बीमारी में जी रहे बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को नियंत्रित करने वाले एक मजबूत कानूनी ढांचे का अभाव भी समस्याओं में शामिल है। विशेष देखभाल की जरूरत वाले बच्चों के लिए आवासीय सुविधाओं की कमी है। माता पिता और देखभाल करने वालों के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन और सहायता का अभाव भी है। इन बच्चों की शैक्षणिक देखभाल और सहायता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई प्रस्ताव रखे गए। ओम्बज पर्सन दफ्तर चाहता है कि संबंधित अधिकारी इन सिफारिशों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
1: 2019 में होल्डेम सेंट स्कूल विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं वाले बच्चों और युवाओं की स्कूली शिक्षा और उनके विकास में सहायता कर रहा है। कैटरबोन में स्थित इसके 2 संस्थानों में लगभग 100 छात्र पढ़ाई करते हैं, जहाँ पिसक से लेकर प्री वोकेशनल और वोकेशनल तक के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। उनकी क्षमताओं के अनुसार अनुकूलित शिक्षण पद्धति उन्हें अपनी गति से आगे बढ़ने में सहायता देती है। अश्विनता बंटू, पूजा सुकालू।
3: होल्डेम सेंट स्कूल में लयका लोग के सहयोग दे के शुरुआत हर छात्र की क्षमता के निमन ढंग से समझे से होला। हर एगो लयका की क्षमता के मूल्यांकन करला के बाद शिक्षण के हर एगो छात्र के व्यक्तिगत जरूरत और ओकर सीखे के गति के अनुसार ढालल जाला। मैं रितेश बिहारी बोलेलन, कोनो लयका अकेडेमिक स्तर पर कमजोर रहेलन स, यही खातिर हमनी लोग थेरापी के कक्षा चलाइला स गतिविधि के माध्यम से, जैसे कि खाना पकाए के, बागबानी। अब जो लयका में क्षमता भा पेशा के परीक्षा दे के तो हमनी उ लोग के तैयार करीला स, तब जाके ई लोग कोनो कॉलेज में दाखिला पाई सकेलन स। दोनों संस्था में 33 कर्मचारी की एगो टीम बाते, जेकर में खास करके शिक्षक, सहायक और देखभाल करता शामिल बा। लयका के रोजाना सहयोग और मार्गदर्शन देवेलन स, मगर सीखे के प्रक्रिया में व्यावहारिक और रचनात्मक गतिविधि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभावेला। हाल ही में आयोजित एगो ओपन डे में संस्थान छात्र लोग के एगो खास विषय पर काम करे के अवसर दिलक, जो डायनोजोर। लयका लोग इ गतिविधि के माध्यम से अपन क्षमता दिखावेलन स, उ लोग के रचनात्मकता, अभिव्यक्ति और आत्मनिर्भरता के विकसित करे में भी

0: मदद करेला
1: खबरों को आगे बढ़ाती हैं 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 157वीं जयंती मनाई गई इतने साल बाद आज भी उनके सिद्धांत दुनिया भर में सत्य अहिंसा और सद्भावना जैसे मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रासंगिक बने हुए हैं बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए परंपरा अनुसार इस बार भी लामोचा गांधी भवन में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया ड्रग्स की समस्या से निपटने के लिए पोर्ट लुइस के डायोसेस ने ड्रग्स का सेवन करने वालों और उनके परिजनों को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए एक अंतर धार्मिक समूह बनाने का आह्वान किया है पिछले गुरुवार को रोजिल स्थित इंस्टीट्यूट कार्डिनल जॉन मार्जियो में प्रशिक्षण का दूसरा सत्र आयोजित किया गया नशीले पदार्थों तस्करी खपत और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों से जुड़े नवीनतम आंकड़े साझा किए गए इस नर्क में फंसे लोगों की बेहतर सहायता करने के लिए अपने अपने समुदायों में लौटने से पहले अन्य चर्चाएं भी निर्धारित हैं वालेरी काली याचना मिश्रा
2: रुचि के साथ लोग इस प्रस्तुति को सुनने आए आर्य सभा मॉरिशस द्वारा संचालित उपचार और पुनर्वास केंद्र से विमला जदुनंदन ने तथ्यों को आधार बनाकर ड्रग्स की समस्या और उससे जीवन में उत्पन्न बाधाओं पर बात की वे बताती हैं
3: L'âge de prise de drogue peut baisser. Hein? La quantité de personnes qui sont en traitement, nous trouvons bien peu de dames, bien peu de filles là-dedans, plus de monsieur.
2: ज्यादा से ज्यादा कम उम्र के लोग और पुरुष लड़के आदि ड्रग्स लेते हैं हमारा मस्तिष्क 25 साल की उम्र तक विकसित होता है और यदि इस उम्र की सीमा के अंदर ड्रग्स लिया जाए तो आप ही सोचिए कि मस्तिष्क पर इसका क्या प्रभाव होगा इस संवाद की पहल पोटवी गिरजाघर की ओर से की गई ये दूसरी बार है जब धार्मिक प्रतिनिधियों के साथ गैर सरकारी संगठनों के जिम्मेदार सदस्य और विशेषज्ञ एक साथ आए ताकि वे राष्ट्रीय चुनौती बनी इस समस्या को समझे और अपने विचार बांट सके क्या कोई भी मॉरिशन परिवार इससे बचा है कोई ना कोई रिश्तेदार इसके चंगुल में है धर्म शायद कुछ उम्मीदें लेकर आई लेकिन मानवता का क्या ड्रग्स किसी भी समाज को मानवताहीन बना सकता है
4: Une, peut-être une espérance, une parole, mais comment garde l'humanisation? Ben là, c'est ça. La drogue a déshumanisé une société.
2: सत्र के अंत में कैथोलिक चर्च को उम्मीद है कि धार्मिक प्रतिनिधि न केवल अपने समुदायों में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे बल्कि विभिन्न धर्मों के बीच आपसी सहयोग भी मजबूत होगा हम अलग तरीके से जानकारी हासिल कर रहे हैं और अब हम जाकर सभाओं में ये संदेश देंगे हम उन लोगों को सुनेंगे उनकी स्थिति के बारे में ज्यादा समझेंगे
5: Nous allons écouter les autres. Nous écoutons les autres. Qui ont des problèmes? Qui fait les autres la drogue? Qui a fait qu'une influence dans la drogue, là?
6: Sa mission et sa travail qu'il fait aujourd'hui, il permet nous capable de dire, mobiliser toi comme coup de main, you are the right resource person to talk to that target market. Tu as vraiment pas tard un exemple pour dire, moi, dans le pays, moi qui ai une religieux musulman, me trouve un problème parmi
2: आज हमने ये जाना कि हम अपनों के बीच संदेश पहुंचाने के लिए सही माध्यम हैं। मान लीजिए पाई में मुसलमान होते हुए यदि मैंने किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को समझाना चाहा, तो शायद मेरी बातों पर उतना दम नहीं होगा जितना कि उस व्यक्ति के धर्म का कोई दूसरा जन हम साथ मिलकर ये आश्वस्त कर पाएंगे कि हमारा देश स्नेह से ज्यादा भरा है आने वाले सत्रों में अन्य विषयों पर भी चर्चा की जाएगी ताकि धार्मिक प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के बीच इस संवाद का सकारात्मक प्रभाव पूरे समुदाय में देखने को मिले
1: आज वे 104 वर्ष की होती सैतुबे में जन्मी लेडी सुशील राम गुलाम अपने परिवार की यादों में एक सतर्क माँ और ससिव सागर राम गुलाम के साथ एक शांत उपस्थिति के रूप में जीवित हैं सुर्खियों से दूर उन्होंने अपनी सादगी और कर्तव्य की भावना से अपने आसपास के लोगों पर गहरी छाप छोड़ी इस पर ज्यादा जानकारी अश्विनता बंटू की रिपोर्ट पर करुणा लालू के विवरण के साथ
7: ससिव सागर राम गुलाम के साथ उन्होंने सदैव ही शांत और निरंतर मौजूदगी बनाए रखी फर्स्ट लेडी को मुख्य रूप से उनके पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए याद किया जाता है
8: Moi aussi, Sossil, quand j'ai mon maman, avec l'aide des pauvres cousines.
0: mais ce qu'as enfant,

0: ça la carré, mais seulement moi aussi, tous les temps, je nous. Jamais, il pas de laisser nous. Son caractère, c'est un caractère super, c'est bien content aux enfants, c'est bien content famille, c'est bien simple.
1: Saint-Aubin, mais on a déjà 2 octobre, on est sur le qui est
2: ce qui me connaît avec le docteur Amgoulam, il est bien content ce moment. Ce moment-ci, il est bien content lui. Et ce moment, ce bénédiction, tous les temps, il est en lui.
3: Le premier fait, c'est l'aide du Parti travailliste. Ça symbolise ça, ma grande dame qui est discrète, le profil, mais c'est eux qui nous font succès de SSR.
4: Traditionnellement, nous célébrons ça l'événement-là aujourd'hui ici en mémoire de Lady Chouchel Ramgoulam, qui est née à Saint-Aubin.
5: Nous connaissons comment les Tibisains sacrifient en tant que maire et en tant que madame Ndimoun quand les sommissiers, les Tibisains, allent de l'avant pour gouverner Maurice.
1: C'est sur Sagar Ramgoulam qui sert de Janik Chavi qui piche une mahila thin, une patni, une maa et sathi, parivar ka ek mazboot istambh.
6: रॉसिल स्थित एम्सो में जानवरों के प्रति संवेदना और सम्मान को समर्पित एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 4 अक्टूबर को मनाए जा रहे विश्व पशु दिवस के अवसर पर आशीर्वाद समारोह आयोजित किया गया। ये समारोह जानवरों के संरक्षण माने जाने वाले संत फ्रांसवा दासीज की स्मृति से भी जुड़ा है। इस वर्ष की थीम है उनकी नज़र से दुनिया को देखिए, यानी सी द वर्ल्ड थ्रू देयर आइज। उनके लिए बुबुना सिर्फ एक कुत्ता नहीं है। 15 साल की उम्र में यह वफादार साथी आमिर के जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। ये मेरे लिए सब कुछ है, मेरा प्यार है, ये हमेशा हमारे साथ आशीर्वाद की तरह रहे। आज उनके मालिक बुबुना को माइक्रोचिप लगवाने के लिए एम्सो लेकर आए। ये कुत्ते के लिए भी जरूरी है जिससे समाज में इसे पहचाना जा सके। कभी भी ऐसा हो कि ये गुम हो जाए तो इसके माइक्रोचिप के जरिए हमें इसके मालिक का पता चल पाएगा। लेकिन बुबुना अकेला ऐसा जानवर नहीं था जिसे आज खास ध्यान मिला। रॉजिल स्थित एम्सो में पिल्ले आपस में खेलते नजर आए और देखभाल करने वालों के करीब आकर प्यार और दुलार का आनंद लेते भी। उनकी आंखों में मासूमियत के साथ एक उम्मीद भी नजर आई।
7: और यहाँ पे मेरा काम बिल्कुल चेक करना पड़ता है, अगर सर्जरी करना है सर्जरी प्रिपेयर करके डॉक्टर को देना है, इसलिए ये काम करते हैं उसको दुख में से निकालने के लिए।
6: विश्व पशु दिवस के अवसर पर आयोजित इस आशीर्वाद समारोह में 4 अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ मंत्री अरविंद बुलेल और जूनियर मंत्री फाब्रिस दावी तथा कई पशु प्रेमी मौजूद रहे। सभी ने जानवरों के प्रति संवेदना और सम्मान के महत्व पर जोर दिया।
8: परमात्मा ने बनाया अनेक प्रकार के प्राणी, इसमें मनुष्य आता है, चिड़िया आती है और इसमें 4 पैर वाले जानवर भी आ जाते हैं। इसी कारण मनुष्य के कर्तव्य ये बनता है कि वह औरों के प्राण और प्राणी के प्रति अपना जो प्रेम है, अपनी सेवा है, प्रस्तुत करे।
6: एम्सो के लिए जानवरों की सुरक्षा का मतलब ठोस कदम उठाना भी है। कुत्तों की नसबंदी को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि उनकी संख्या में बढ़ोतरी और आगे चलकर आवारा कुत्तों की संख्या को कम किया जा सके। ये स्थिति पर ध्यान देते हुए हम माइक्रोचिपिंग और कुत्तों के रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे जान पाए कि कितने कुत्ते हैं। इस विश्व पशु दिवस का संदेश सार्वभौमिक है, उनकी नजर से दुनिया को देखना सीखना, हमारे जीवन में उनके महत्व को समझना भी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पेन के कतालोनिया प्रांत में भारी बारिश के चलते भयानक बाढ़ उतर आई है। कई नदियां उफान पर हैं, 2 लोगों के मारे जाने की खबर है और कई अन्य लापता बताए गए हैं। बढ़ते हम अब मौसम संबंधी जानकारी की ओर रजनी बेकर के साथ।
9: दक्षिण पूर्व की ओर से जो बादल बढ़ रहे हैं वे रह रहकर हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि रात में आमतौर पर आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी ऊंचाइयों पर। रात के दौरान और कल सुबह बादल घिरे रहेंगे और कुछ बारिश भी हो सकती है, मुख्य रूप से देश के पूर्वी इलाके, दक्षिणी इलाके और सेंट्रल प्लेटू पर। ऊंचाइयों पर कोहरे छाए रहेंगे। दिन के दौरान मौसम अच्छा रहेगा। दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी जिनके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। वर्षा होती रहेगी। प्रवाल रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा।

दक्षिण में 2.50 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। फिर भी कल दिन के दौरान इसमें सुधार आने लगेगा। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम तापमान 15 और 17 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 22 और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 और 21 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 27 एवं 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। शाम 6:08 पर सूर्यास्त, सुबह 5:47

तो इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ है, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। कंसल पर हमारे सहयोगी शिव हैं, उन्हें भी हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हम शोक समाचारों की ओर। सुल्फिरिनु नंबर तीन वाकवा में 89 साल के श्री सत्यानंद दीपचंद जिन्हें माँ जोदालों के नाम से बहुत ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके बेटे किशन दीपचंद के घर सुल्फिरिनु नंबर तीन वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बालोंस नंबर 5 सुल्फिरिनु की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमीशन टुमोरो 10 AM कावली सौरो दुफ्रे में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के श्री नीलाधर मंगल जिन्हें हरिदेव के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल सुबह 9 बजे उनके घर दुफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बूशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 9 AM अलीमोंग पोस्ट दिफ्लाक में 57 साल की 57 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सविता जरी जिन्हें पिक पिक के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल सुबह 9 बजे उनकी माँ माहिनी जरी के घर पोस्ट दिफ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचा की शमशान भूमि ली जाया जाएगी। कमीशन टुमोरो 9 AM थ्रोजियम अली गर्द मेबर्ग में 68 साल की 68 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती गोमती देवनारायण पैदाशम रामफल और जिन्हें मदम रामफल के नाम से बहुत ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके घर मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बो लेन मेबर्ग के शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमीशन टुमोरो 8 AM एवेन्यू सियाकूफ कैट्रबोन में 63 साल के 63 ईयर्स ओल्ड के श्री संदेश कुमार सिलोचन जिन्हें चिबाई के नाम से बहुत ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे लाशापेलाउदा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स के शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 10 AM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति मारी गहरी संवेदना है।

0: रेडियो मॉरिशियस
1: 820 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो।
0: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: Center 94 North South 95.6 East West 98.2. You are listening to RM3 Radio.
1: नमस्कार और एक प्यारी सी शाम आप सभी श्रोताओं के नाम. आप सुन रहे हैं नई सोच कार्यक्रम और आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के साथ. जी हाँ, मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए. 7 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा. आज रविवार 4 अक्टूबर है 2026. चलिए आज का पहला गाना सुनते हैं सुरेश वाडकर की आवाज़ में.

जी दोस्तों, जिंदगी में हर दिन हमें एक नया मौका देता है, कुछ नया सोचने का, कुछ नया सीखने का और अपने आप को कल से बेहतर बनाने का। कभी हालत हमारे हिसाब से नहीं होती, लेकिन उन हालात को देखने का नज़रिया हम ज़रूर बदल सकते हैं। चलिए, सोच बदलेगी तो नज़रिया बदलेगा और नज़रिया बदलेगा तो ज़िंदगी भी बदलने

0: नई सोच।
1: तो दोस्तों, इस खूबसूरत सोच के साथ आज के सफर को यही विराम देते हैं। कल फिर जिंदगी के नए मोड़ पर, नए शख्सों पर और नए गीतों के साथ मुलाकात होगी। लेकिन इस प्रोग्राम के समाप्त होने के बाद आप सुन पाएंगे दिलों की आवाज़ प्रोग्राम। और हमेशा याद रखिए कि तब तक मुसाफिर रहिए, अपनों के साथ निभाइए और इस ज़िंदगी के सफ़र को दिल से जीते रहिए, क्योंकि हम सब मुसाफिर हैं और हर सफ़र अपने आप में एक खूबसूरत कहानी है।

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: रात के 7 बज चुके हैं, श्रोताओं नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं RM Free Radio और मैं उषा कौर, यहाँ पर प्रस्तुत है दिलों की आवाज़, आपके अपने कार्यक्रम। जी हाँ, यहाँ बातें होगी दिल की, जज्बात होंगे अपनों के और गीतों के साथ जुड़ेंगी जिंदगी की खूबसूरत यादें। तो दिल को तैयार रखिए, मुस्कुराहट रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज फिर सुनेंगे दिलों की आवाज़ प्रोग्राम, खासकर आप लोगों के नाम। और आपको फ़ोन करना होगा ऑन 5 402 8070। जी हाँ, 4028 0070। और मैसेजेस आप भेजेंगे ऑन, भेज सकते हैं ऑन 5 2 5 0 6 2 0 0। हमें आपका इंतज़ार है। चलिए, खूबसूरत गीतों का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। 80s और 90s के खूबसूरत गाने।

0: दिलों की आवाज
1: सात बजकर 24 मिनट हुए हैं दोस्तों हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से रिश्ते निभाते हैं किसी के लिए वक्त निकालते हैं किसी की फ़िक्र करते हैं किसी की खुशी में खुश होते हैं लेकिन एक रिश्ता अक्सर हम भूल जाते हैं और वो है खुद से खुद के साथ रिश्ता जी हाँ कभी कभी हमें दुनिया की आवाज़ से थोड़ा दूर होकर अपने दिल की आवाज़ भी सुननी चाहिए खुद से पूछना चाहिए कि हम सच में खुश हैं या सिर्फ सबको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं खुद से दोस्ती का मतलब है ये नहीं कि हम दुनिया से दूर हो जाए इसका मतलब है अपनी ज़िंदगी अपनी खुशी अपनी गलतियों को और अपनी खुशियों को समझना और खुद को एक मौका देना तो आज थोड़ा वक्त खुद के नाम कीजिए अपने दिल की सुनिए और खुद से कहिए कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में उतना ही ज़रूरी हूँ जितने मेरे अपने लोग फरेब फिल्म का ये खूबसूरत गाना सुनते हैं और ये गाना जाएगा रोहित जी के लिए जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम बबासे और साथ में राजेंद्र रघुपत जी जो रहते हैं विदेश में जी हाँ लंदन में और इस समय हमें सुन रहे हैं साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद आपको

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: जैस दोस्तों, कहते हैं ना, खुशी हमेशा किसी बड़ी वजह से नहीं मिलती। कभी सुबह की एक प्यारी सी मुस्कान, किसी अपने का फोन, या फिर बारिश की बूंदें, या फिर अच्छा

एम फ्री रेडियो रेडियो मनोरंजन आप सुन रहे हैं। जी हाँ, दिनों की आवाज़ प्रोग्राम जहां हम चलाएंगे 80s और 90s के खूबसूरत गाने। और याद दिला दे, हम लाइव टिकटॉक भी कर रहे हैं और काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनका नाम हम लेंगे ज़रूर। जी हाँ, यहां पर शालिमा खेडू है और साथ में है प्रिंसेस सज्जन नुश। जी हाँ, नुश जो हमें सुन रही है, थैंक यू सो मच। हाँ, भी पहुंचता है गाना, वो मांग रहे हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए। एम जी इवेंट, इंदिरा जी, प्रयाग, श्वेता, नमस्ते टू यू। और नुश जो है गाना मांग रहे हैं योगिता और ऐशा के लिए। चलिए, धन्यवाद इंदिरा जी, गाना आपके लिए। राजेश के लिए, राजेश उगौ के नाम। यश जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम लिवरपूल इंग्लैंड, साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। और विश्वानी जी, आपके नाम गाना जाएगा, आपकी बेटी पूर्णिमा जो रहते हैं क्वीन विक्टोरिया, मीमा के नाम। और साथ में नीलेश, चलिए गाने की सिलेक्शन बहुत बढ़िया है, थैंक यू सो मच। और बबीता ओ याद दे ओ जायब, चलिए बबीता जी आप रहती हैं प्लेन दे रोश। ये खूबसूरत सा तराना सुनते हैं और भूलिएगा नहीं हमारा जो पेज है, आप लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, आपको हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए 9 बजे तक हम आप लोगों के साथ हैं।

0: RM3 Radio. Radio.
1: दिलों की आवाज 7:40 हो चुके हैं दोस्तों और आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम। कहते हैं ना, हम अक्सर बड़ी खुशियों का इंतज़ार करते करते उन छोटे पलों को भूल जाते हैं जो रोज़ हमारे सामने आते हैं। और आज रविवार है, आप अपनों के साथ हैं, अच्छे समय बिता रहे हैं, तो चलिए एंजॉय। और यहाँ पर हमें सुन रही हैं बबीता जी जो रहती हैं प्लेन डू रोश, और नीतिश के लिए जो रहते हैं क्वीन विक्टोरिया, और साथ में विंटी गोपल जो गाना मांग रही है एक रोमांटिक गाना। चलिए गाना तो रोमांटिक ही है ना, 80s का गाना हम चलाएंगे ज़रूर। निवेद के लिए हाय निवेद, मीला रामा जो हमें सुन रही है फ्रॉम डीप रिवर, मिदुन हेलो टू यू, और स्टेला जो है गाना वो मांग रही है अपने बच्चों के लिए केविना और केविन। पवन के नाम रवि रामचंद के लिए, नीलू मेगी आपके नाम भी हम गाना चलाएंगे, और साथ में वेन के लिए। आप जो भी है जहाँ भी है इस समय हमें सुन रहे हैं, ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, प्यार बांटते रहिए, नफरत को भूल जाइए। कभी कभी हम ऐसे बातें करते हैं जो दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, और ऐसा क्यों करते हैं, कभी कभी कुछ लोग दूसरों को चोट पहुंचाने में उनको खुशी मिलती है, तो ये बहुत गलत बात है। अगर आपकी आदत है तो इस आदत को आप बिल्कुल बदल लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। ये वादा रहा टाइटल सॉन्ग किशोर दा और आशा जी की आवाज़ों में।

0: RM3 Radio. Radio. दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: दोस्तों, ये तो सच है कि जिंदगी असल में इन्हीं छोटी छोटी खुशियों से मिलकर बांटती है। इसीलिए हर पल को महसूस कीजिए, हर अच्छे लम्हे को दिल में संभालिए और अपनों के साथ हंसी बांटिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर यूके से हमें सुन रहे हैं नोआ और गाना वो मांग रहे हैं अपनी बेटी हाना के लिए। और साथ में आप हैं धीरज, नमस्ते आपको। और रूपन पवन, आपके लिए गाना हम चलाएंगे। और काजल यहाँ पर अपने बेटे गौरव अनुरत के लिए गाना मांग रहे हैं। कल उनका जन्मदिन था, तो हमारी ओर से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद उनको और जितने भी लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। सो वी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और जैसे कि हमने कहा है, यहाँ पे हमें सुन रहे हैं तरन दौलत जी, आप हमें करुणा जी, चलिए गाना जाएगा आपके नाम और आपके हस्बैंड के लिए सत्यन, जो इस समय काम कर रहे हैं। और आप हैं वरुण गति, अमृता दसाई, रामचरण, बहुत धन्यवाद। युधिश, चलिए युधिश यहाँ पर अपनी मम्मा को सरप्राइज़ देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी माँ जो है अभी खाना बना रही है और नाम है आशा और वो रहती है बेल रोज़। चलिए आशा जी, आपके बेटे ने आपके लिए गाना मांगा है, होप यू विल एंजॉय। और लिफ्ट करा दे विक्रम भिक्की के लिए गाना आपके लिए। हाय अंशु, हमारा प्यारा अंशु के लिए। और साथ में है दीक्षा, प्यारी दीक्षा, विमी, नवीन कुमार दयाल, आपके नाम, मास्टरमाइंड। और जय जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम यूके,

0: दिलों की आवाज़ की आवाज़ दिलों की आवाज़
1: 7:55 हुए हैं जहां कभी कभी दिल में बहुत कुछ होता है लेकिन जुबां तक कुछ नहीं आ पाता। किसी को कहना होता है कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो, किसी के को कहना होता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और कभी किसी से सिर्फ इतना कहना है कि मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी तो मांगने पर हम कभी कभी कमज़ोर होते हैं, हम माफ़ी नहीं मांगना चाहते, और ऐसा क्यों होता है पता नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दिनेश गोपी हमें सुन रहे हैं और केदारनाथ पूजा शॉप और गिफ्ट हेलो टू यू। और साथ में यहाँ पर कृष्णा जो रहते हैं फिजी आइलैंड और हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। और आप है करिश्मा फ्रॉम वाली डी प्रेट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। गाना आपके लिए और आपकी बेटी, आपके बेटे रोहन के लिए संध्या वाइटलिंगम आपके नाम गाना जाएगा। और साथ में राज अग्रवाल आपके लिए भी गाना हम चलाएंगे। और साथ ही साथ में रॉक गंगाराम, चलिए गंगाराम फैमिली के लिए और साथ में उनकी प्यारी पत्नी सुकवंती के नाम साधना आलगू, जी हाँ गाना वो मांग रही हैं अपनी बेटी नेहा के लिए, कल उनका जन्मदिन है। जन्मदिन का गाना हम नहीं चलाएंगे लेकिन ज़रूर अगला गाना जो है उनके नाम जाएगा।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
2: जी हाँ, कभी कभी कोई हमारी ज़िंदगी में आ जाता है और इतनी खुशी दे जाते हैं कि क्या करें, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी है और सुख दुख की कहानी है, उसको लेकर हमें आगे बढ़ना है। और यहाँ पर हमें सुन रही है हर्षा और गाना खासकर वो मांग रही है अपनी दो बेटियाँ के लिए, शर्वी और आद्यवी के लिए, जो इस समय सोने जा रहे हैं लेकिन गाना सुनना चाहते हैं और नाम भी सुनना चाहते हैं। तो चलिए, कल स्कूल है, जल्दी से सो जाइए आप दोनों। और राज जगलाल हेलो, और आशा जी, और पू जो है, पू मेरे ख्याल से आपका नाम है पू, और गाना आप मांग रही हैं पति विनय श्याम, आज उनका जन्मदिन है। चलिए, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद उनको। हेलो टू विक्रम सोहज बाली, आप रहते हैं ग्रैंड बॉय, और गाना खासकर आपके लिए और आपकी प्यारी बीवी हेमा के नाम। निष्ठा के लिए हम गाना चलाएंगे, आप है

और बीरबल आपके लिए गाना नेली जो है गाना मांग रही है रोहन के नाम और हमारी प्यारी कविता जी आपके लिए भी साबिता पॉल चलिए गुचिना ने एक गीत की मांग की है बाद में हम जरूर चलाएंगे देखते हैं और साथ में ये गाना जाएगा निवेद के लिए जो हमें सुन रहे हैं थैंक यू सो मच निवेद ऐसे ही सुनते रहिए और कियाना अपनी बेटी अपने हस्बैंड के लिए गाना मांग रहे हैं रितेश

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: चलिए, जैसे कि हमने आप लोगों से कहा है 80s और 90s के गाने हम चलाएंगे, और यहाँ पर सौटन फिल्म से लिया गया लता जी का जो गाना है ये, जी हाँ, कहते हैं ना ये जो ज़िंदगी है एक गीत है, उसको उसके साथ हमें गुनगुनाना चाहिए। और यहाँ पर साथ दे रहे हैं सुखविंदर जी, और आप हैं हीना जासमीन, और गाना आप मांग रही है लक्षणा दीपक रजवीर और शिक्षा के नाम। अच्छा, नुसरत ने बोला है कि कल स्कूल नहीं है, वाओ, अच्छी बात है। और चलिए सनशाइन के लिए ये शी गाना मांग रही है अपनी बेटी क्याना के लिए। और दानी जगरू आप रहते हैं गुड लेंस, मामजल जान पूरा एड्रेस आपने दे दिया। लक्ष्मण सिंह गोबिन हमको बेस्ट विशेस दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। ऋषि बुधू धन्यवाद आपको, अशराफ हेलो, हमरेश सिंह जावाही, और साथ में है अब्दुल रिशाद, किरण गुहा आपके लिए डास्कोल गाना जाएगा आपके लिए, और वैश के लिए तुझे भुला दिया, हमने किसी को भुला नहीं है। और जी हाँ, हर्षा गाना मांग रही है अपने हस्बैंड विमल, और चलिए कभी 80s कभी 90s ये जो सिलेक्शंस हैं खासकर आप लोगों के लिए हमने बनाया है, बस एंजॉय कीजिए।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज। चले दिलों की आवाज़ प्रोग्राम आप लोगों के नाम कहते हैं ना, कुछ बातें हम जुबान से नहीं कह पाते हैं लेकिन दिल से ज़रूर बहुत कुछ कहना चाहते हैं। और यहाँ पर गुचिना गंगा बिसन जो है गाना वो मांग रही है केश राज के लिए, और गाना मांगते मांगते वो ये भी कह रही है कि केश राज तुम मेरे दिल के सबसे करीब हो, तुम्हारे साथ हर पर खास लगता है, तुमसे बहुत प्यार है हमेशा रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। जी हाँ, चलिए यहाँ पर आप दोनों के नाम ज़रूर गाना हम चलाएंगे गुचिना और केश राज के लिए। और साथ में हमें सुन रहे हैं शम्मा, जी हाँ शम्मा, हेलो टू यू। और साथ में है रॉय, तस्लिमा, नमस्ते, जयवंती, जुधू, नुनन। चलिए ये गाना आपके लिए, और नाम जैसा भी है हम कोशिश कर रहे हैं कि नाम को ठीक से पढ़े। मनीषा नमस्ते आपको, सीता सीताना नमस्ते, और अश्ले ग्वापा वो रहते हैं ग्रांबोआ, गाना खास कर उनके लिए और उनकी प्यारी पत्नी और बेटी बेटा और बेटी के लिए।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: 8:10 हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें हम बस थोड़ा और जीना चाहते हैं। कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें हम खत्म

नहीं करना चाहते हैं और कुछ अपने ऐसे होते हैं जिनके साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। आज जाने की जिद ना करो, सिर्फ एक गीत का एहसास नहीं बल्कि उस पल को संभल कर रखने की खूबसूरत तमन्ना है। तो चलिए यहाँ पर हम जारी रखते हैं ये खूबसूरत कार्यक्रम और

सीताना आपके लिए थैंक यू सो मच और आश्ले गुगा जो रहते हैं गौबा जी हाँ आपका नाम हमने ले लिया है और साथ में हरीश चुनी नमस्ते टू यू मिस्टर तरुण राम आपके नाम सुनील रेग्मी राहुल हिमेश रेशमिया और साथ में हैं उत्तम बीरावा जी गाना मांग रही हैं अपनी धर्मपत्नी के लिए और उनकी परी के नाम और वुतन और मोलू फैमिली के लिए शेर जो है गाना मांग रही हैं और आप हैं प्रताप सिंह सीतालू जी जी हाँ हमारे जो कोलीग्स हैं गाना वो मांग रहे हैं रानी के लिए रेहाना विमला देवीना डॉक्टर अंजू और श्वेता चोली के पीछे क्या है चलिए प्यारा सा तराना डाउन टू मेमोरी लेन खलनायक फिल्म से लिया गया अलका याग्निक और ईला अरुण की आवाजों में

0: RM3 Radio. Radio. दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: आज बजकर 35 मिनट हुए हैं, बढ़ते हैं आगे। और रेश शिवा सानन जो है वो गाना मांग रहे हैं अपनी मांग रही है अपने हस्बैंड कैलाश के लिए, और साथ में और जय प्रताप सिंह, थैंक यू सो मच तय आप बुला आपके लिए। और चंदा जगो गुरु गाना वो मांग रहे हैं अपने दोस्त केविन के नाम। देविका किसनामा, जी हाँ आप हमें सुन रहे हैं, धन्यवाद आपको, गाना जाएगा आपके लिए देविका, तमाम सुनने वालों के लिए और आपके हस्बैंड विशाल के लिए। और सबीना जो है राम भाजी जो रहती है विलनुआ, और गाना वो मांग रही हैं अजय कावी ईशा के नाम। और देविका जो है गाना वो मांग रही है अपने बेटे कार्तिक जो 11 साल के हैं। हेलो हिमेश रेशमिया, नमस्ते टू यू। वाला और बलराम जी, जी हाँ बलराम बोलोटिया। और कृष मोहन यहाँ पर है, वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ अपने दोस्त के लिए जो मिसिंग है।

आजकल वो दिख नहीं रहा है, उनका नाम है एनएस। तो चलिए अगर वो देख रहा है सुन रहा है तो एनएस प्लीज आपके फ्रेंड्स को आप कॉल कीजिए। और किरण जो है नमस्ते टू यू,

और साथ में गाना जाएगा रजनी मोहबीर के लिए। और किरण जो है वो गाना मांग रही है अपनी फेवरेट अरिजीत परी के लिए।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज।
1: दोस्तों, जिंदगी में ऐसे पल बार बार नहीं आते, इसीलिए जब कोई अपना पास होता है, जब माहौल में अपनापन हो, तो उस लम्हे को महसूस कीजिए, क्योंकि कुछ पल बीत जाते हैं लेकिन उनकी यादें हमेशा दिल में रह जाती हैं, है ना। और यहाँ पर हमें सुन रहे हैं आज़ादी सिमदो, ओके। और बहुत से लोग इस सिलेक्शंस को पसंद आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो बस आपको कहेंगे धन्यवाद। देवंश जो रहते हैं ख्वाया, और यहाँ पर रोहन गाना मांग रहे हैं पत्नी प्रविता और तिलक फैमिली के लिए। और साथ में विशाल जी जो रहते हैं दुबई और हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। और साथ में यहाँ पर संगीता जी जो रहती हैं क्यूपिप साथ दे रही हैं। और राजीव जो रहते हैं ब्रिटानिया, आपके नाम है ये अगला गाना जाएगा। तो आइए इस खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं ये यादगार गीत।

0: दिलों की आवाज़ की आवाज़ दिलों की आवाज़
1: जी हाँ, दिलों की आवाज़ प्रोग्राम अभी तो ये कार्यक्रम समाप्त होने को है, लेकिन जाने से पहले यहाँ पर हमें सुन रहे हैं नीतीश और उनका जन्मदिन है, सो ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद उनको, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और राजीव जो है जो रहते हैं ब्रिटानिया, रामा के नाम गाना हम चलाएंगे और साथ में है कार्तिक आपके लिए। और विश्वानी जी जो रहती हैं बोबासा, गाना वो मांग रही हैं भाई सतीश, आज उनका जन्मदिन है, सो ढेर सारा प्यार और ब्लेसिंग टू यू। और किरण रघुनाथ हेलो नमस्ते। रेखा सुकन जो है जो रहती है ब्राह्मस्थान, और गाना वो मांग रही हैं अपने हस्बैंड विकास के नाम। रोशनी देव जो रहती है लॉन्ग माउंटेन, और अंजू हरिलाल आपके लिए भी। 8:47 हुए हैं, चले एक और प्यारा सा गीत यादगार लता जी और उदित नारायण की आवाज़ों में डर मूवी से लिया गया।

0: खेलों की आवाज
1: चलिए आज के इस आखिरी गीत के साथ ये प्रोग्राम यहीं पर समाप्त हो जाएगा और अंजू हरिलाल जो है गाना वो मांग रही है अपने हस्बैंड विक्रम के लिए और साथ में शैला जी गाना मांग रही है जन्मदिन के मौके पर अंतिश सिचन और साथ में शैला जी आपका जन्मदिन है तो ढेर सारा प्यार टू यू लव यू ना बहुत धन्यवाद

सिस्टर आप जुड़ चुके हैं सुनील बेरवाल नमस्ते शैलेंद्र गिल और ऋषि नंदलाल के लिए जी हाँ तो दोस्तों आज की महफिल यही समाप्त करते हैं और उम्मीद है आज के गीतों और बातों ने आपके दिल को छुआ होगा मैं उषा कौर आपसे इजाज़त लेती हूँ मुस्कुराते रहिए खुश रहिए और रेडियो के साथ जुड़े रहिए फिर मिलेंगे दिलों की आवाज़ के साथ शुभ रात्रि

0: Get on, baby.
1: कसं काय मंडळी?
2: दर शनिवारी व रविवारी ट्यून इन करा आपल्याच मराठीचा धमाल कार्यक्रम 9 AM to 10 AM नितीन बरोबर
1: कसं काय मंडळी.
3: रात के 9:10 हो गए बा सभी प्यारे श्रोतागण के हमार नमस्कार स्वीकार कर जा. आज हर रविवार के दिन और रात्रि में त ठंडा गिरा था तो हर खातिर भोजपुरी तड़का और नंबरवा घुमावा काट सौ दे काट हो वह काट हो वह सैंक और मैसेजेस भेज सकब जा ऑन सैंक दे सैंक एन सेट 00 सैंक और उषा कौर तो हर संगे रात के 11 बजे ले

0: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
1: 9:20 हो गए बस आटे लोगन हमेशा प्रार्थना करेला कि ईश्वर हमने के बहुत कुछ दे पर तो लोग साथ साथ ये भी कामना करिया जाके झूठ से बचाए के और सत्य के तरफ बढ़ाए के आशीर्वाद तोरा प्राप्त हो। तो चल अगला गीत कृषि के गावल गीत संगीता जी खातिर जन रहिला क्यू पिप और गाना मांगत अवंजा पति देव और बेटी आशी खातिर

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भोजपुरी तड़का।

0: भोजपुरी तड़का
1: चल भोजपुरी तड़का तो हर संगे रात के 11 बजे ले और आज रविवार 4 अक्टूबर रविवार की रात बा और यहाँ पर ही हमें सुन रही है ममता जी हाँ क्यों पिप से और गाना मांगा तो वंजा अपन पति के शव खातिर और बेटियाँ जो है खुशी और अरवी और पूरे सिगोपुर परिवार के लिए

सुनो बस तू ऐसे काम पड़ल वहां

0: भोजपुरी तड़का
1: रात के 10 बज गल बा श्रोता लोग हरदम बोली ले सके तोहरा पॉजिटिव चाहेला रहे के यानी सकारात्मक सोच चाहेला अपनाए के फिर भी बहुत कोई सब बात समझते हुए भी चिंता से अपन के कमजोर बना देवेलन जा ये जीवन में एकदम बोली ले जा कदम कदम पर मुश्किल आवेला पर हार मार कर बैठ जाइबा त समझा हो जा तो हर जीवन निरर्थक बन जाए त हिम्मत जुटा के मुसीबत के सामना करा जा त चला अगला गीत सुना कुनल बाबूलाल के गावल गीत
0: भोजपुरी तड़का
1: रात के 10 बज गल बा और ये गाना देवरानी जी खातिर देवरानी सिबोरत जी खातिर जौन रहिला क्यों पिप और गाना मांगत वंजा अपन खातिर और पूरे सिबोरत परिवार खातिर

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 10:35 हो गल बा श्रोता लोग चला सुनत हवन जा भोजपुरी तड़का कार्यक्रम आर एम फ्री रेडियो और रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। और यहाँ पर ही हमने के सुनता विनोद

ता चला देखते देखते 11 बजे के बाद पूरा कार्यक्रम में तो हर सुंदर साथ रहल खाते हृदय से धन्यवाद अपन ख्याल रखिया जा और हर दम खुशी से जिंदगी के स्वागत करिया नमस्ते और शुभ रात्रि

अरे गुनी बुलाने से क्या होगा, जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा, अरे गंदे पानी पीकर प्यास बुझा लिया तो

अरे रिश्ता जोड़ने से क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौखट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: On the hour, every hour, Radio Mauritius.

श्रोताओ, रात के 11 बजे हैं। रेडियो मॉरिशियस पर सुनहरे पल लेकर मैं आई हूँ पूनम। आप सभी को नमस्कार। और मैं तो आपसे यही जानना चाहूँगी, आपका रविवार पूरा दिन कैसा बीता? अब आराम से बैठिए, 60, 70 और 80 के दशक के गीतों के साथ एक ये प्यारा एक घंटा हम एक साथ बिताएंगे। आप सभी का स्वागत है सुनहरे पलों में।

श्रोताओं, रात के 11 बजे है रेडियो मॉरिशस पर सुनहरे पल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम। इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं पुराने गीतों के साथ, कुछ यादें बांटेंगे और थोड़ी सी बातचीत करेंगे। आइए इस पहले गाने को सुनते हैं।

0: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: एक ही गीत हम सब सुनते हैं लेकिन यादें अलग अलग होती हैं। किसी को अपना पुराना घर याद आता है, किसी को शादी का दिन, अभी आपके मन में कोई तस्वीर आई होगी, उसी के साथ अगला गीत सुनिए।

0: 800 and 19 kilohertz. This is Radio Mauritius.
1: पुरानी तस्वीर में अपना चेहरा देखकर कभी हंसी आती है, कैसे बाल बनाए थे, कैसे कपड़े पहने थे, फिर बाकी चेहरों पर नजर जाती है तो कितनी बातें याद आती हैं। तस्वीर छोटी होती है, उसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी होती है, और वही जो कहानी होती है वही तो सुनहरे पल होते हैं।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: घर में किसी ने पूछा होगा, अभी तक सोए नहीं, और आपने कहा होगा बस ये गीत सुन लो, रात की एक छोटी बातचीत में कितना अपनापन होता है। अच्छा लगता है कि हमारा कार्यक्रम भी आपके घर में एक घड़ी में शामिल हो जाता है, और जब शामिल होता है तो हम सबका एक अपना प्यार और साथ बन जाता है।

अगर कोई आपके पास बैठकर सुन रहा है तो कभी ऐसा भी होता है, गीत शुरू हुआ और दोनों ने कहा ये तो बहुत अच्छा है, फिर बातें रुक जाती हैं, दोनों सुनते रहते हैं साथ भी।

0: बनाने के लिए हमेशा बोलना जरूरी कहाँ होता है। बस सुनते रहिए AM2 हमेशा आपके साथ।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

कुछ गीत पहले अपनी धुन के लिए पसंद थे, आज उनके बोल मन में रह जाते हैं। गीत वही है लेकिन हमारी जिंदगी में कितनी बातें जुड़ गई हैं, इसलिए बरसों बाद सुनकर भी उसमें कुछ नया मिल जाता है। और जब नया मिलता है तो एहसास होता है कि वो गाने, वो दिन, वो पल कितने खूबसूरत थे।

0: श्रोताओं, आज की मुलाकात यहीं पूरी होती है। उम्मीद है कोई गीत आपकी पसंद का रहा होगा, कोई याद अच्छी लगी होगी। अगले शनिवार रात 11 बजे फिर मिलेंगे। मैं थी आपके साथ पूनम, आपसे विदा लेती हूँ। आराम कीजिएगा, शुभ रात्रि।
1: On the hour, every hour, Radio Marches.

जिसकी सारी लिमिटेशंस फिनिश हो, कोई हद ना हो, उसके बहुत से असबाब हैं, बहुत से रीजंस हैं जिनकी बिना पर अल्लाह जल्ल मजलू कि वो बरकत आता होती है, वो ब्लेसिंग जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, उनमें से एक जब इंसान खाना खाए और उस दौरान जो दस्तखान पे गिर जाए, जो जर्रात गिर जाते हैं, मसलन चावल है उसके दाने गिर गए, बिरयानी है उसके दाने गिर गए, तो दस्तखान से उन्हें चुन चुन कर उठाना और खाना, इससे इतनी बरकत मिलती है कि जो इंसान सोच भी नहीं सकता। तंगदस्ती, गुर्बत, खाने पीने का मुयस्सर ना आना, इसका डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और उस पर खजाने गैब खुल जाता है, उस अदब की वजह से कि वो खाना जो उसने दस्तखान में से गिरा हुआ चुन चुन के उठाया और खाया। आजकल सोसाइटी में ये कंप्लेन बहुत कॉमन है कि खाने में पीने में बरकत नहीं, दिन ब दिन पूरी दुनिया में गुर्बत का तनासुब, तंगदस्ती का तनासुब बढ़ता चला जा रहा है। सो एक तरीका यह है कि इंसान खाने को जाया ना करे, इतना खाना प्लेट में निकाले, बिरयानी हो या कोई और हो, जितना वो खा सके, और उस दौरान जो दाने गिर जाए तो उसे चुन चुन कर उठा उठा के खा ले, उसका अदब कर। छोटा सा अमल है लेकिन अल्लाह पाक इसकी बरकत से रिस्क के दरवाजे खोल देता। चुनाचे समरातुल औराक में सैयदना हुदबा बिन खालिद अलैहि रहमतुल माजिद व नवर अल्लाह मरकदहु कान मिन किबारिल मुहद्दिसीन, जो अजीम मुहद्दिसीन में से, उलूम हदीस के माहिरीन में से, अजीम उलमा में से, उनको उस वक्त के खलीफा हारून और रशीद ने खाने को बुलाया। जब वो खाने से फारिग हुए तो दस्तखान पे जो खाना उसके जर्रात गिर गए थे उसे चुन चुन के खाने लगे, तनावल फरमाने लगे, तो खलीफा

हारून रशीद ने उनसे पूछा कि क्या आपने शिकम शेर होके नहीं खाया? तो आपने फरमाया नहीं, मैंने खूब खाया, लेकिन ये जो दस्तखान पे गिरे हुए जर्रात खाने के मैं उठा के खा रहा हूं, इसका रीजन ये नहीं है कि अभी भूख बाकी है, भूख की वजह से नहीं। इसका रीजन एक हदीस जिसको सैयदना हम्माद बिन सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत की। आपने फरमाया कि हदीसे पाक में है कि जो शख्स दस्तखान पर गिरा हुआ खाना चुन चुन कर उठा उठा के खाएगा तो उसको कभी तंगदस्ती, गुर्बत कि खाना पीना ना हो इसका डर नहीं, वो इससे बेखौफ हो जाएगा। अल्लाह पाक इतनी बरकत देगा, इतनी बरकत देगा कि कभी वो तंगदस्ती का शिकार नहीं होगा, कभी उसके हाथ तंग नहीं होंगे। जब ये हदीस खलीफा ने सुनी तो बहुत ज्यादा मुतासिर हुए और अपने गुलाम को इशारा किया। वो गुलाम आए और 1,000 दीनार रुमाल में बांध कर लाए। खलीफा ने उस मुहद्दिस को, उस आलिम को वो नजराना पेश किया। जब नजराना पेश किया तो उस अजीब मुहद्दिस ने इस पे बड़े उम्दा कमेंट्स किए और फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह हदीस पे अमल की बरकत हाथों हाथ। यानी ये बरकत हुई उन जर्रात को उठाने की और उठा के खाने की जो वो मुहद्दिस दस्तखान पे चुन चुन के उठा के खा रहे थे, क्योंकि उनका रीजन हदीस थी। अब यहां दो चीजें, एक हदीस पे अमल है, हदीस को देखना, और एक लोगों को देखना। लोग इसको अच्छा नहीं समझते, लोग इसको अच्छा नहीं समझते कि कोई गिरी हुई चीज दस्तखान पे गिरा हुआ खाना उठा के खा ले, और वो भी किसी आम इंसान के मेहमान नहीं थे, वो उस वक्त के अजीम खलीफा के मेहमान थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे, ये नहीं देखा। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को, आज हम और आप बहुत सारी अहादीस पर और सुन्नतों पर अमल से इसलिए महरूम हैं कि हम ये समझते हैं लोग क्या समझेंगे, लोग क्या कहेंगे।

तो लोगों को देखने की वजह से हम बहुत सारे बरकात से महरूम हो जाते हैं। जाहिर है कि उस मुहद्दिस के आसपास कोई आम लोग नहीं थे, वो भी वक्त के उलमा, उमरा, वुज़रा, साहिबान दौलत, बड़े बड़े लोग थे। उन लोगों में इस हदीस पे अमल करना कोई आसान न था, लेकिन मोमिन वो है जो खुलाफा, उमरा, साहिबान दौलत व इख्तदार, अवाम किसी को न देखे। जब रसूलुल्लाह का फरमान आ गया तो हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान पर अपनी अक्ल और लॉजिक को कुर्बान कर दिया। आज अगर आप किसी को मसला बताते हैं, कुरान और हदीस सुनाते हैं, तो कहते हैं सोसाइटी में ऐसा नहीं होता, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे, पालाब होगा, गीबत होगी, कि एक नई चीज आ गई। नहीं, वो नई नहीं है, हमने अमल न करके उसको नया बनाया। विलायत के तस्करे तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सुना कि मकसद विलायत क्या है? मकसद विलायत है इत्तिबाए रसूल, इत्तिबाए सुन्नत। द पर्पस ऑफ विलाया to follow the sunnah of Rasulullah and his sharia, it is the purpose of wilayat. Wilayat ka maqsad yahi hai ki insaan shariat o sunnat ko follow kare. Ye maqsad hai wilayat. Kitne azim muhaddis hue, kitne azim ulama hue, fuqaha hue, auliya, ahlullah, ulama hue, जिन्होंने हर हाल में, हर हाल में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, हदीस को, तालीमात को और अफकार को देखा और उसे फॉलो किया। और अल्लाह पाक ने उसी वक्त उन पे रिज़्क के दरवाजे खोल दिए, उसी वक्त, और दुनिया को बताया कि रिज़्क़ के दरवाजे उस वक्त खुलेंगे जब आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करोगे। अल्लाह पाक इतनी बरकत देगा थोड़े से पैसों में कि जो आपके वहमो गुमान में भी वो बरकत ना हो, ना किसी और के वहमो गुमान में। हम महरूम इसलिए हो गए कि हमने सुन्नतों पे अमल छोड़ दिया। हम महरूम इसलिए हो गए कि हमने शरीयत को फॉलो करना छोड़ दिया। हम अपने मिजाज पे चलने लगे, अपनी ट्रेडिशंस, वो जो शरीयत और सुन्नत की अगेंस्ट से, उसे फॉलो करने। अल्लाह पाक ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। महबूब, प्लीज से, प्लीज डिक्लेयर, इफ यू लव अल्लाह देन फॉलो रसूलुल्लाह, फॉलो हिज सुन्नत शरीयत। इफ यू फॉलो रसूलुल्लाह एंड हिज सुन्नत, अल्लाह विल लव यू and Allah will forgive your faults and sins. Allah is the most forgiving and merciful. Mahboob, inse keh do ki agar tum Allah se mohabbat ke muddai ho ki nahnu nuhibbullah, we love Allah, agar tumhara dawa yahi hai to phir Rasoolullah sallallahu

सल्लमा की शरीयत को फॉलो करो। इस मुहद्दिस को अल्लाह से इस मोहब्बत, इस मुहद्दिस के दिल में हुजूर सलाम की मोहब्बत थी, इसलिए इन्होंने दरबार शाही में न किसी और को देखा न बादशाह को देखा कि ये क्या करें। उनके सामने दस्तखान पे गिरे हुए टुकड़े उठाए और वो उठाकर खाने लगे। आज तो एक आम आदमी जिसकी कोई हैसियत ना हो वो भी शायद इसको गवारा ना करे, लेकिन ये वक्त के मुहद्दिस की उम्मत पे सवाल आया ही इसलिए है कि उम्मत ने सुन्नत और शरीयत को फॉलो करना छोड़ दिया। जवाल उम्मत पे इसलिए आया, इसलिए उम्मत इन्हेदात कशिकार हो गई, दिन ब दिन जवाल पजीर हो गई। आज अगर मजमूई हैसियत से ये पूरी उम्र हुजूर सलाम की शरीयत और सुन्नत को फॉलो करने लगे तो वो जो पहले बहारें नसीब होती थी वो फिर से लौट आए, वो बहारें फिर से नसीब हुई। शाहाने वक्त इनका नाम सुन के कपकपाने लगे और शाहाने वक्त भी इनका अदब, और अल्लाह पाक इन पे अपने रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए। इसलिए अपनी दुआओं में ये दुआ जरूर शामिल करें कि अल्लाह हमारी जिंदगी को सुन्नत और शरीयत के मुताबिक बनाते हैं। जब आपको लगे कि इस वक्त दुआ कबूल होती है तो उस वक्त ये दुआ मांगो जिसकी जिंदगी शरीयत और सुन्नत के सांचे में ढल गई उसकी दुनिया भी सवर गई और उसकी आखिरत भी सवर गई, उसकी आखिरत भी बनी और दुनिया भी बनी, वरना फिर खसरत दुनिया वाला आखिरा न इल्लल्लज़ी न उल्लल्लज़ी, ना इधर के रहे न उधर के। अब इस मुहद्दिस की अजीम शान देखे, क्योंकि जितने मुहद्दिसीन हुए वो औलिया हुए, वो सूफिया जुहदा, वो अपने वक्त के बड़े बड़े साहिबान जुहद व तकवा हुए, और ये बहुत बड़ा एजाज है उसके लिए, उस मुहद्दिस के लिए। क्या ये एजाज कम है कि सदियों से इस रिवायत का तज़किरा हुआ और कियामत तक इसका बयान होगा। फकत एक अदाए मुस्तफा ने और हुजूर सलाम की हदीस पर अमल इस हदा उसे वो जिंदगी अता की, उसके तस्करे को बका अता कि सुबह कियामत तक उसके तस्करे से। इसलिए इकबाल ने कहा, इकबाल उनके इश्क का इकबाल उनके इश्क का फैज़ आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दबाम है। ये इश्क का फैज़ आम ही था, ये इश्क का रंग ही था कि बड़े मजमे में उन्होंने उमरा खुलफा सलातीन के सामने दस्तखान पे गिरे हुए टुकड़ों को उठा के खाए और उसको अपने लिए ऑनर समझा, अपने लिए इफ्तिखार समझा, अपने लिए इज्जत समझी। इसलिए कि इज्जत का मेयार वो नहीं है जो आवाम के नजदीक है, इज्जत का मेयार वो है जो अल्लाह रसूल ने अता किया। अल्लाह पाक ने फरमाया, फलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, फरमाया इज्जत अल्लाह की है, अल्लाह के रसूल की है और मुमिनीन की है। लेकिन फरमाया कि मुनाफिक नहीं समझते कि हकीकत इज्जत क्या है, वो जिसे चाहे इज्जत करे और इज्जत हुजूर की शरीयत और सुन्नत को फॉलो करे।

0: पाक हमें शरीयत व सुन्नत पे अमल की तौफीक अता फरमाए। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद व मा अलैना।
1: NBC Radio 24 hours a day.

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: अच्छा गुनगुन, मुझे अपने पापा के बारे में कुछ बताओ।